0: perspective, addressing issues that matter to young Indians. BJP leaders are also expected to visit universities as part of the wider youth engagement drive. So a lot of thrust being put by this new team BJP on the outreach to Gen Z. Now, talking about the Vande Mataram showdown, it has intensified after BJP has passed a 10-point resolution. The resolution was taken at the party meeting chaired by National President Nitin Naveen and attended by the newly appointed National Office Bearers. The BJP leaders recited all six stanzas of the national song. BJP resolution strongly opposes the Congress decision of playing only two stanzas. BJP said that the full national song comprising six stanzas represents India's national consciousness and the legacy of the freedom struggle. Priyank Kharge challenged BJP leaders including Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah to sing full Vande Mataram without a teleprompter.
1: ये उनके पार्टी में ऐसा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है. देशद्रोही तो वही खुद ही है क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे. हमने गुलामी से उनको बाहर निकाला. अरे आओ भाई, आजादी में हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो. ये हक किसने दिलाया? हमने दिलाया.
2: वंदे मातरम इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, इकोनॉमिक इश्यू. व्हाट इज द रुपी वर्सेस डॉलर रेट नाउ? 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwatji, ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakhas. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign them.
3: भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा. वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपीरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे.
4: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है. वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे. ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है. जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है. तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है. इसमें कोई तथ्य नहीं है. और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है. ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए. शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है. वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंस ही तुरंत फील नहीं होना. वो एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में, ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं.
0: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Minister of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy meanwhile hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
5: ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾರ

0: ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯು ಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
1: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
2: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किए सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
3: Government of India rejecting permission to Chief Minister Revanth Reddy for his foreign visit to United States of America, and Ministry of External Affairs terming it as inappropriate, raises serious questions here in people of Telangana. What could be so inappropriate for the Chief Minister Revanth Reddy's visit to the USA? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
4: A heartbreaking tragedy in Maharashtra, where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet at home is still awaiting their return.
5: Wahi pahad hai, main aapko bata deta hu ki ye wahi pahad hai jisse is Kunal Chandgude naam ke ladke ne apni जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था. इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर. कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी. इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची. करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे के करीब, कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियल मसाला।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
11: अक्रॉस द कंट्री
12: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Vikrant.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV. New rules of
4: Good morning, you're watching NDTV. I'm Divya Vadva. We have a whole lot lined up for you, including two people who have died and five others have been injured at an incident that's taken place in Mumbai. A 22-foot Ganesh idol fell on them because the bolts and nuts were apparently not in place. We're going to get you details first. The headlines. Prime Minister Modi meets with the new team of Nitin Naveen, spelling out what is basically in focus. That includes fresh ideas, strong organization, deeper connect with the people, particularly the Gen Z, calling it a valuable interaction with the new team. Politics has played out over Rahul Gandhi's student outreach in Pune, the Chhatro Ki Goonj event that is being termed as Paiso Ki Goonj by the BJP, alleging that the Congress paid 10 crore rupees to get those people at the event. The NHRC has directed the Punjab government to probe the allegations that Chief Minister Bhagwat Mann's wife, Gurpreet Kaur, had demanded 5 crore rupees to suppress, to hush up a rape case. Those are the allegations that are being made against her, and what is now going to be taking place is an investigation and action within a matter of 2 weeks. MK Stalin admits a defeat and failure on his part and that of the party, says it's time for a revamp. Meghalaya government has formed an SIT in order to investigate what happened on the 19th of August, where violence had erupted, establishing the sequence of events there at the rally, with reports of stone pelting at Assam-registered vehicles. But it is the chief minister giving out assurances in regard to Assam. Let's begin with breaking news coming in from Tamil Nadu. It is the former Chief Minister M.K. Stalin who slammed the new Chief Minister of the state. The actor turned politician, the Chief Minister now, Vijay. Vijay is treating the assembly like a cinema set, is what is being said by the former Chief Minister and the Chief of the DMK, M.K. Stalin. Stalin has said that the Chief Minister is busy changing names of our schemes, which is delivering punchy dialogues, and it's a win or lose as far as the DMK people are concerned. And people are with the DMK party, is what M.K. Stalin is saying, that he's drawing parallels and saying the Chief Minister is more of an actor, and which is why he's delivering those kind of punches. And, you know, he's looking at the frills of it all, and that is changing names of our schemes, but not really coming down to the grassroots levels of doing work. Listen in.
5: இப்ப இருக்கிற முதல்வர் நாம கொண்டு வந்த எல்லா திட்டங்களுக்கும் பேர் மாத்தறதுல பிஸியா இருக்காரு. சட்டப்பேரவையை சினிமா செட்டு நினைச்சு பஞ்ச் டைலாக் பேசுறாரு. நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையோட பின்னணி பிணைஞ்சிருக்கக்கூடியவங்க நாங்கள்.
4: Vijay, my colleague, joining us in order to get us details. Vijay, of course, you know, drawing parallels between his past life of being a real actor, saying that that is also seemed to be playing out in the assembly, saying that he's treating the assembly itself like a cinema set. Before I come to you, let's just cut across to Prime Minister Modi here. Let's just get you details of what is happening here with Prime Minister Modi there, interacting, meeting with...
6: And this is just the beginning. Generally, we say that it's just a warm-up for Skyroot. Abhi shuruaat hai. And next year, mid tak, hum ek launch per month हम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर. तीन फैक्ट्री बन चुका है. एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे.
2: एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है सर. इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है.
3: उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का.
2: स्काईरूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया.
3: अच्छा. वो रूट आपको काम आ रहा है?
2: वो बहुत काम आ रहा
3: है. दुनिया आप भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
7: आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है. हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं.
3: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है. और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ. मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
6: हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं.
8: हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजिन्स बनाते हैं सर. ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है. एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है.
3: कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है, और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं.
9: दिस रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट विल गो टू स्पेस, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit.
10: We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space.
11: My name is Antariksha. My co-founder Monica is also here. Sir, hum India ka first space pharma startup hain. Hum aise satellites bana rahe hain jo space mein jaake pharmaceuticals manufacture kar sake aur use wapas le aa sake antariksh se.
3: Aapka naam antariksh rakha kya aapke parivar ke log isme the pehle se?
11: Ji sir, meri nahi meri mummy ne rakha tha sir.
12: एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला, 8 लॉन्चेस के लिए, और मोस्टली इंटरनेशनल है.
13: तो अभी तो 10 लाख फार्मर के साथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इंफॉर्मेशन.
14: चलिए आपके लिए, ताकि एक याद बनी रहे, आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: Jante hain, main Elite Matrimony kyun recommend karta hoon? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
1: एलिगेशन हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात।
2: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे माननीय सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विदिन 24 आवर्स जा तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
3: Shifting our focus to breaking news that's just coming in, and this is over the rising sugar prices in India. The politics is now erupted over the same, where the Congress and the UPT Sena have targeted the government over sugar price hike. Manish Tiwari has flagged the rising sugar prices. He has said that ethanol push driving is equal to sugar prices rise. And remember, while the linkage of ethanol to sugar price hike is happening, the government has gone out and rejected the claims. Meanwhile, we see the UBT Sena also coming out and saying that the ethanol diversion is hitting sugar supply, and that what has actually become cheaper in these 12 years is what the UBT Sena is asking. Meanwhile, the government has gone ahead and said that ethanol is not behind the sugar price rise. Government has completely rejected the ethanol link and has revealed the reasons behind the sugar price hike. Let's first listen in to what the opposition has to say on the matter.
4: आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फ़ायदा हो रहा है।
5: 12 साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना। शुगर में जो शुगर केन के लिए जो जो शुगर केन आता है अब साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा, तो कहाँ से आएगी ये सब चीज़ें? सरकार को पता होना चाहिए। आपने आपके मंत्रियों को बोला है यूनिवर्सिटी में जाओ और जिंद से डायलॉग करो, वो बच्चों के घर में जाइए किचन में और उनके माँ और पिता से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Thanks a lot.
1: Air Marshal Nagesh Kapoor here on Control All Defense. If you have been, thanks so much for watching. We'll see you next time.
2: Bye-bye.
3: सत्रह वर्षों का धैर्य, हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों की अथक मेहनत और विकास का एक विराट संकल्प, धरती की गहराइयों में तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लीमनाबाद।

0: worship to his mother. There is a glimpse onto their bond. In one of the video, the son is seen worshipping his mother. The new footage shows a mother's desperate attempt to save her son, while the old video captures the bond that they once shared. And one question that's there on everybody's mind, what actually led to a family of three jumping off the cliff?
1: वो बेटे को बचाने को गए, लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए. वैसे ये इन इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी. इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के. उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया. फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई, और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली.
0: And with that, it's time for us to slip now a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue here on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। Across the country,
1: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Celebrate Raksha Bandhan with Samsung Galaxy. Own the Galaxy S series starting at just Rs. 73 per day and the Galaxy A series starting at just Rs. 50 per day.
1: विगत 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार के सुशासन एवं निवेश फ्रेंडली नीतियों से उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए, साथ ही निवेश।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: parties are taking shape in the form of an alliance. The DMK, meanwhile, has slammed Vaiko over alliance claim. Ellen Govan has said that Vaiko does not understand politics and that he acts for personal welfare. Let's first listen into this reaction that's coming from the DMK.
1: ஒரு உடன்பாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் நடப்பதாகத்தான் நான் நம்புகிறேன். திரை மறைவில் ரகசியமான ஒரு உடன்பாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் நடப்பதாகத்தான் நான் நம்புகிறேன்.
2: You'll talk anything. See, when he starts talking against his opponents, he will talk anything. Because he doesn't know politics. He is a fiery speaker, that's all. Because of that, people thought that he is a scholar. He is not a scholar. Now he had joined thinking that he can also have some ministers. He had joined the TVK Alliance, but both the MLAs who had won in the DMK symbol did not join him. That is what he is angry and he is fighting against DMK now.
0: Vijay is continuing to stay with us on the broadcast. Vijay, talk to us about the context in which Vaiko has made this big charge.
3: Well, this is not the first time after 2026 election defeat, MDMK and even TVK have been continuously to target DMK, calling they are trying to have a secret ties with the union government, BJP. But however, DMK on various occasions has rejected those comments. Even now Vaiko had said he believe there are some secret arrangements are going on behind the screens to have some sort of understanding between DMK and BJP. Remember, BJP is an ideological opponent of DMK party in Tamil Nadu, even for TVK party. But however, over the delimitation issue, TVK started to criticize DMK, saying that DMK is looking to support delimitation bill whenever it is being tabled in the parliament. But however, DMK rejected those remarks, calling that as a politically motivated statement. They will not have alliance with the BJP party. Now, TK Ilangovan has responded to Vaiko, calling him as irrelevant in politics. He doesn't know politics. Even his party's two MLA continues to stay with the DMK party. Those two MLAs of MDMK are not trusting Vaiko. That's why he is making irrelevant statement.
0: All right, Vijay, thank you very much for sharing those details with us. With that, we move on to some other stories that we are tracking in the broadcast. And this is regarding the sugar price rise that are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting pressure on sugar availability and pushing up prices. Also, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging that sugarcane supplies are being diverted for ethanol, while attacking the government over the broader rise in the cost of living. But the government has rejected the opposition's claims. Government has said that ethanol production is not driving sugar prices, stressing that adequate sugar stocks are available and that a stable supply for consumers has been ensured.
4: Chini ke bade hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
5: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां खराब होंगी. और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
6: 12 साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना। शुगर में जो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है अब साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा, तो कहाँ से आएगी ये सब चीज़ें? सरकार को पता होना चाहिए। आपने आपके मंत्रियों को बोला है यूनिवर्सिटी में जाओ और जिंद से डायलॉग करो, वो बच्चों के घर में जाइए किचन में और उनके माँ और पिता से डायलॉग करिए।
7: इस प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। वैसे सर्वजन को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी कच्ची चीनी विदेशों से भी इम्पोर्ट किया है, लेकिन यहाँ होर्डिंग ना हो, होर्डिंग के तरह उनको दाम ना बढ़ाएं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है, त्योहारों में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए लोगों को इनके तमाम अफवाहों से बचना चाहिए, ये ना करें लोग के भी खरीद लो, ज्यादा खरीद लो, कहीं मिले नहीं, बिल्कुल मिलता रहेगा।
0: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
8: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
0: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV. A political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwat Mann's wife Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past nor would be intimidated in the future. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint and directed the Punjab government to probe the allegations. The Chief Secretary and DGP have been asked to submit an action taken report. Meanwhile, the Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking the Chief Secretary and DGP to place the facts before the NHRC. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within 24 hours.
9: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
10: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
11: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम
12: अब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स या तो वो माफी मांगे नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
0: With that, it's time for us to slip in our very quick break. Don't go anywhere. News and update continue here on NDTV.

0: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes...
1: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get you the big stories of the day, let's first have a quick check of the headlines that we're tracking at this hour. Sugar prices soar, spark political clash. Congress UBT Sena blame ethanol diversion for tighter supplies, while the government rejects the charge, says ethanol is not driving the price rise. Political spat over Rahul Gandhi's Pune student outreach. BJP alleges Congress brought a paid crowd and influencers. Congress denies charges, says students turn up voluntarily to hear Rahul and share their views. After TVK ministers projected Chief Minister Vijay as the next Prime Minister, Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore hits back, says TVK ministers are still in the mindset of fan club. He also stressed that Congress's approach is different than the TVK. The NHRC has directed the Punjab government to probe allegations that Chief Minister Bhagwat Mann's wife demanded Rs 5 crore to suppress a rape case. Chief Minister's wife denies claims, says ready to face the accusations. Prime Minister Narendra Modi interacts with chief executive officers and founders of 20 space startups in New Delhi. During the interaction, the Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of the people. All right, we're starting with some breaking news that's just coming in. Congress Party has now drawn a parallel of Rahul Gandhi to the cartoon character Batman. The BJP has mocked the Congress Party, saying that they do not know how appropriate it is for the Congress Party to portray Rahul Gandhi, the leader of opposition, as a cartoon character from a comic series. So the latest flashpoint between the BJP and the Congress over Congress Party portraying the leader of opposition, Rahul Gandhi, as a Batman. We have some reactions coming in from the BJP on that note. Let's listen.
2: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress Party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
3: If people are comparing him with Batman, Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction, he had the resilience, he had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape, he needs a white t-shirt.
1: All right, joining us live on the broadcast is my colleague Diksha. Diksha, talk to us about why were these posters put up? What was the context?
4: You know, I was just outside 24 Akbar Road where a couple of posters have been put up talking about Rahul Gandhi as Batman. Now, there is a significance and a symbolism to using him as a Batman ideal. The entire concept of what Batman represents is that someone who is fighting injustice, who is fighting crime. And Rahul Gandhi has, you know, been in the news talking about the alleged pellet gun victim and talking about filing an FIR. So there's a broader idea to what Congress is trying to promote. And at the same time, BJP is comparing it to a comic book character also holds sway. So Congress is maintaining, as we heard Pawan Khera already talk about, that Rahul Gandhi needs nothing, not even a cape, just a white t-shirt. That's how Rahul Gandhi is trying to portray and represent himself. And that's how Congress leaders and people on the ground are seeing him. Over to you.
1: All right, Diksha, thank you very much for sharing those details with us. Moving on to some other big stories that we are tracking. Well, politics has erupted over Rahul Gandhi's student outreach program in Pune. BJP has hit out at the Rahul event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to attend the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth. But the Congress has hit back, rejecting the BJP's charges. Congress says that students and youth came to hear Rahul Gandhi and share their views, and that no one was brought to the event by offering money.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
6: ये जो माहौल है, अब युवा इस देश का, इस देश के बच्चे, इस देश के स्टूडेंट्स राहुल जी को सुनने के लिए और राहुल जी को अपने बात को बताने के लिए आए। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि हमने पैसे देकर लाया है, उन बेवकूफ को बताओ या आकर देखे कि पैसे देकर आए हैं या खुद आए हैं, इसका जवाब उनको यही मिल जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो होते हैं, झूठ नैरेटिव फिक्स करने वाले होते हैं, उसको कितना भी आप कोशिश करो, अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे नहीं, राहुल गांधी तुमको रोकेगा, तुम राहुल गांधी को रोक नहीं सकते।
7: सुना है आजकल राहुल गांधी की नकल करने के लिए काफी बीजेपी के लोग सामने आए हैं, मोहन भागवत जी ने करके देख लिए, हशर क्या हुआ आपके सामने है। नकल करने के लिए ईमानदारी की शक्ल भी लगती है, वो बीजेपी में किसी के पास है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दिल्ली आप क्या जवाब दोगे अगर कोई खड़ा होकर पूछ लेगा कि सर्पदंश से आश्रमशाला में बच्चे मर गए, आपने क्या किया। एमपीएससी में फूड इंस्पेक्टर का पेपर टूट जाता है, फार्मासिस्ट का पेपर लीक हो जाता है, क्या जवाब दोगे, जनजी तो सवाल करेगी।
1: मूविंग ऑन टू द अदर स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग, देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल राव ओवर द पिच within the TVK of making Chief Minister Vijay the Prime Ministerial candidate. The Congress has now hit back at TVK after TVK's pitch for Vijay as the Prime Minister. Congress MP and party's Tamil Nadu Chief Manikam Tagore has hit back at TVK ministers and said that they are still in fan club mode. He also added that Congress's way of working is different from the TVK. Several TVK ministers have backed Vijay for the Prime Ministerial face, and Tamil Nadu Minister K.A. Sangotian has said that Chief Minister Vijay has capabilities to rule the nation in future. In fact, there was another Tamil Nadu Minister who said that today's chief minister is going to be tomorrow's prime minister.
8: நல்ல நீ ரசியர் பண்ற போர்ட்ல இருக்கவங்கள நீ மவுண்ட் மாத்த முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷா மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள், அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
9: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
10: அதுதான் நம்ம தளபதி, எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And with that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very short break here on NDTV. Don't go anywhere. News and updates continue.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: तमाम लोगों का कहना है कि मीडिया ध्रुवीकरण में बंद गई है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और विश्वसनीयता खोई है, जैसा कि वहाँ पर तमाम रिपोर्टर्स के साथ हुआ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता वास्तव में कम हुई है, और क्या इसको वापस पाने के लिए आपकी नज़र में क्या किस तरह से पाई जा सकती है?
1: पंकज, आपने मेरे काम को पिछले 2.5 दशक से देखा है। मैं लेफ्ट या राइट पक्ष में या खिलाफ में इस तरह की पत्रकारिता में विश्वास ही नहीं करता। मेरे हिसाब से कि आपको सबकी सुननी चाहिए। सरकार का कोई कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं, कांग्रेस या विपक्ष का कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाते हैं, उनको भी सुनते हैं, और मैं इसी तरह की पत्रकारिता में विश्वास रखता हूँ। तो ये कहना कि जनता के बीच में मेनस्ट्रीम मीडिया को लेकर सवाल हैं, एकदम हैं, वाजिब हैं, और मेरे में ही जहन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि हमारे कई सारे साथी हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जो जब इस तरह के सवाल पूछते हैं, इतना डर के पूछते हैं, लेट पे किसी के चरणों पे लेट के पूछते हैं, उससे क्या ही कर रहे हैं यार, मतलब कैसे सोते होंगे रात को, मतलब ईमानदारी से करो, अपना काम करो, और नहीं कर पाए तो घर जाओ, मतलब कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं ना करने की। आपको जो करना है, जिस हद तक आप ईमानदारी से कर सकते हो आपको करना चाहिए, नहीं कर पाए तो कुछ और कीजिए। ऐसे आपको किसी ने बांध के थोड़ी रखा हुआ है कि डर डर के आप सवाल पूछ रहे हो। भाई सर, जनता का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है सवालों के जवाब देना। वित्त मंत्री इस प्रोटेस्ट खत्म होने के अगले दिन NDTV प्रॉफिट के कार्यक्रम में आई थी, बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स मुंबई में ताज कुलाबा में था, और हमने कई सारे सवाल पूछे कि क्या बहुत देरी कर दी सरकार ने स्टूडेंट्स से इंगेज करते हुए, पहले क्यों नहीं जगे, इतनी नाराज़गी स्टूडेंट्स में आई, आपको पता क्यों नहीं चला, पहले धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों नहीं जवाब दिया। वहाँ पे कई सारे औद्योगिक घरानों के लीडर्स थे, उन्होंने बोला अरे आप में बड़ी हिम्मत है, आपने किस तरह से ऐसे सवाल पूछे। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, हिम्मत नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और जिस हद तक मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूँगा, और इसमें मुझे कोई ब्रेवरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए, ये मेरा काम है, मैं अपना काम ठीक से करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हमारी टीम में जितने भी एंकर्स हैं, संपादक हैं, रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना काम अच्छे से करें, और हमारी उम्मीद है कि हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो सोच है, हमारा जो प्रयास है, वो जनता देखेगी, मानेगी। मेरे को जो चिंता है पंकज, वो ये कि जनता के बीच में कभी कभी वो मेनस्ट्रीम मीडिया को एक मोनोलिथ के तौर पर देखते हैं कि सारे चैनल एक जैसे हैं, या सारे नेता चोर हैं, या सारे पुलिस वाले चोर हैं, या सारे पत्रकार भी क्यों हैं। मेरे को लगता है वो गलत है। अगर आप देखो तो आप पाओगे कि अलग अलग शेड्स, जिंदगी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते, सबका अपना सोचने का तरीका है, अपना काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है जैसे आने वाले वक्त में NDTV और काम करेगा इस नए अवतार में, लोग जो हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं वो नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं उसको देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे।
2: सो रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज द टफेस्ट चैलेंज इन लीडिंग अ लेगेसी न्यूज ब्रांड अकॉर्डिंग टू यू?
1: द की इज रेलेवेंस इन माइंड स्पेस। यू नो, एज वी लिव इन द अटेंशन इकोनॉमी, वेयर अटेंशन स्पैन्स आर बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर, लाइक इंस्टाग्राम रील्स, how do you capture mind space and attention? And it is very easy to capture attention if you are in one corner. If you are extreme right, you call the students goons, there will be a certain population you appeal to. If you are fully on the side of the students and you think the government is the worst thing, it's the worst government in the world, it's the most horrible thing that's happened to India, if you project that image, as many people do, then again you'll have a very core constituency of loyal believers. How do you find space in the middle? I believe India's democracy thrives in the middle. This is where our democratic values live, they breathe. I think of NDTV as a big tent of ideas, of opinion, of shades. This is not one Moses leading the way and showing people the path. This is not about what I think. This is about different editors, different journalists, different shades of opinion. I don't have to agree with everything each one of our anchors or editors says. You have to give people shades of opinion. Pankaj may have a different take at Samachar for Media on a story. Neeta may look at it differently. Rohail may look at it differently. You have to be able to appreciate different points of view. You can't say, this is the only point of view. I know in some networks, that's how it works, that the editor-in-chief says, this is my line on the story and expects all reporters to follow exactly that line. I think that is wrong. I think that reporters need to report what they're seeing around them. It should not be dictated from somebody sitting in an AC studio dictating and determining what their reporters and anchors will say. And I think anchors and editors should be allowed to voice their own thoughts without being dictated by a central command. This is the line, this is the WhatsApp group, and now this is what you must say. I think that's wrong. That's not journalism. That's propaganda.
3: At the risk of making it sound like a monolith, the younger generation think that the traditional media has failed them, and the independent

0: digital platforms are the way forward. Now, in this case, also considering the kind of adoption digital has, you know, how everybody's flocking to digital, would you say your main priority and your main competition is battling with the digital platforms as opposed to your other contemporaries on TV?
1: Neeta, NDTV has been digital first long before I got here. Long before other newsrooms were even thinking of apps, this is the OG of India's digital ecosystem. They have one of India's best news apps, if not one of the world's best news apps. Their Google domain authority is very deep into the Google algorithm, which is why when you're looking for stories, you know, the first brand, the keyword that pops up is NDTV, which is nothing to do with us at this moment. This is the work that the fabulous battery of journalists, editors, producers over three decades have done. This is thanks to their effort that this is India's digital OG. So other platforms are coming to terms with this digital reality now. NDTV was digital first. Even in terms of revenue, we make more money on the digital side than we do on television. And therefore, this is not something that scares us. NDTV is and has been forever digital first. It's a change we're embracing wholeheartedly. And ultimately, even on these digital platforms, people will go to handles or pages or channels that they connect with. Ultimately, when there's so much algorithmic pushes, do people trust your brand? NDTV Digital has amongst the highest percentages of people coming directly on the homepage.
0: Okay.
1: In the companies that I've known, just a very small fraction of your daily readership comes directly to the brand. Most of it came earlier through Google search and Discover. NDTV is the one Indian news organization which gets people directly on the homepage. That's the connect it has with its audiences. And we're trying to build on that. You're trying to build on that, you're trying to grow that. And that's the effort that's currently underway. So I think I'm hugely excited by the changes the digital frontiers present for news organizations. I know that there is a lot of upheaval at this moment. Many will potentially fall by the wayside. But I am quite certain that the one brand that will be standing once the ruins are being counted will be NDTV.
2: इन्हीं सब सवालों को आगे बढ़ाते हैं. आपने चैलेंज की बात की, आपने डिजिटल की बात की. अगर हम आपके 12-14 महीने का, शायद मेरे ख्याल से आपका 16 महीने का, तो इस जो कम समय में आपने क्या क्या चेंजेस किए जो आप आए तब से, उसके बाद आपने न्यूज़ रूम में क्या क्या चेंज किए, पहली बात. दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि जो चेंज किए वो सभी काम कर रहे हैं? बाकी आप क्या करने वाले हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पर बात करते हैं.
1: सबसे पहले पंकज, हमने अपने कोर न्यूज़ को मजबूत करने की कोशिश की कि अगर आपकी न्यूज़ टीम्स हैं वो हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो, बिजनेस में हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, तो वो लगना चाहिए कि वो लड़ भिड़ रहे हैं न्यूज़ के लिए. ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूज़ ब्रेक हो रही है, ये लोग सो रहे हैं या वीकेंड मना रहे हैं, या फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि खबर आ रही है जा रही है, हम लोग हरकत में हैं कि नहीं. कि लगना चाहिए कि ये 24 घंटे का निरंतर लगातार ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल है. पहले वो एनर्जी और वो पैशन आपके न्यूज़ रूम में, आपकी स्क्रीन पर, आपके टिकर पर, आपके ट्विटर हैंडल पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पर दिखना चाहिए कि ये न्यूज़ में. दूसरा ये कि आप ये नहीं मान सकते कि हम लोग रेस में हैं. क्या आप लोग रेस जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? ये हमने जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहते थे कि हाँ, इंडियन टीम गई ओलंपिक्स में, हमने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है. मैं यहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ. और टीम में वो जज्बा हो कि हम लोग जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीतने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. तो पहले तो न्यूज़ को आप स्ट्रेंथन कीजिए कि आपके चैनल की कोई रेलेवेंस हो. ऐसा नहीं हो सकता कि NDTV क्या दिखा रहा है, इससे किसी की सेहत पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है तो भी, नहीं है तो भी. मतलब कई सारे चैनल इतने रूखे सूखे से हैं कि वो दिखाएं, करें ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. NDTV पर खबर चलती है तो व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के हर गलियारे तक, चेन्नई से लेकर दुनिया में आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वहाँ पर उसका असर है. ये मुझे पता है क्योंकि फ़ोन मुझे आता है कि खबर है, चैनल का इम्पैक्ट है, उसका रेलेवेंस है, ये बात है. तो पहली बात तो ये है कि ब्रांड का रेलेवेंस होना चाहिए, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए. दूसरा ये कि ऑडियंस आपको देख रही है कि नहीं. NDTV में एक वक्त पे ये सोच थी कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमें देखते नहीं हैं. लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये रेटिंग वेटिंग सब बर्बाद है, इससे कुछ होता नहीं है और हम रेटिंग के पर. मैं ये नहीं मानता भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं. वो इंस्टाग्राम पे हो, एक्स पे हो, लिंक्डइन पे हो, TV पे हो, YouTube पे हो, तो आपको दिख ही रहा है ना. आप ही नहीं कह सकते ये मेरा वीडियो तो बेस्ट वीडियो था, इसको किसी ने देखा नहीं लेकिन मेरे सवाल इतने अच्छे थे कि उनको समझ में आया. ये कोई मतलब नहीं, इस लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो दूसरा हमने कोशिश की कि जो हमारा काम है जैसे YouTube पे, सोशल पे, डिजिटल पे, क्योंकि पिछले कई सालों में कई सारी फाइनेंशियल दिक्कतें थी, कई सारे लीगल चैलेंजेस थे, तो जो प्रयोग बाकी कंपनियों में हुए वो इतना यहाँ पे नहीं हुए क्योंकि टीम बाकी चीज़ों में फंसी हुई थी, तो उन चीज़ों को हमने मजबूत करने की कोशिश की। और तीसरी कोशिश हमने की कि एक NDTV मल्टीवर्स बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ें, जिसमें लाइफलाइन जो कि हेल्थ केयर, एंटी एजिंग, वेलनेस इससे जुड़ी हुई है, लॉन्च पैड जो कि करियर प्रोग्रेशन, अपस्किलिंग इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, NDTV गुड टाइम्स जो कि लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, लग्जरी इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, NDTV ऑटोमेट जो कि गाड़ियों के बारे में हम खबरें दिखाते, तो इस तरह के कई सारे वर्टिकल्स पे हमने काम करना शुरू किया है। एक तरीके से जैसे आप मानिए कि अभी आप पौधा लगा रहे हैं, ये पेड़ बनेगा, जो हमने कोशिश की है पिछले 14 महीनों में वो ये है कि इस तरह के पौधे लगाए जाएँ जो कि एक मल्टीवर्स बने, कि आपका न्यूज़ है वो आपका कोर इंजन है, उस कोर इंजन के इर्द गिर्द आप अलग अलग नए पिलर्स बनाएं, वो पिलर्स आपके लिए कम्युनिटी बने, आपको अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें, और साथ ही साथ उसी तरीके से आप एक नया NDTV बनाएं।
3: Raul, there's a perception, you know, when I interact with industry folks, they say that NDTV isn't making enough impact editorially. What would you say on that?
1: You know, people are entitled to think whatever they want. What somebody else working in some other newsroom thinks, frankly, is of no concern to me. What is far more important is whether those who are in the news ecosystem, those who we are reporting on, or more importantly, those who are watching us, whether they feel we are making an impact or not. When our teams were in Chennai covering the swearing-in of Vijay, or when we were in Bangalore when the leadership transition happened, there were dozens of people coming over to Shivarur, Veera Raghav, Vasudha, Venu Gopal, saying, oh, we saw you on NDTV, can we get a photograph? That is impact. What those people think, that matters to me. What some person sitting in some newsroom thinks of us is inconsequential. That is real impact. I'd gone during the Bihar elections to, you know, these very impoverished parts of Bihar, beyond Purnia, Kishanganj. There people came up and said, अरे हमने आपका ये वाला इंटरव्यू NDTV इंडिया पे देखा था, अरे आप तो मखाना के खेत में कूद गए थे, दिस इज़ इन प्लेसेस लाइक किशनगंज एंड दिस इज NDTV इंडिया एंड वी जस्ट अबाउट स्टार्टेड एंड आई एम हार्डली इवन कमिंग ऑन एन एंकरिंग। दैट इज़ हाउ डीपली पेनिट्रेटेड द आइडिया ऑफ NDTV इज़। दीज आर, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल न्यूज़ ब्रांड, दीज आर फोर मैजिकल लेटर्स रोहिल, NDTV। What some jealous competitor sitting in a rival newsroom thinks of our editorial impact is completely inconsequential. What those who matter, from the White House in Washington to Kartavya Bhavan in New Delhi, to the corridors of power in Chennai, Rajasthan, West Bengal, and to the streets, villages of India, what they think of our editorial impact, that is what I'm concerned about. Rivals are welcome to think whatever they want.
0: You know, connecting editorial impact to also revenue, I want to understand, you've announced a slate of new ventures, which is from auto, lifestyle, data-driven journalism, all of that. I want to understand, how are you prioritizing in such a way that you're not spreading out your resources too thin when there is revenue pressure already? And how will you make sure that your core journalism is not sacrificed when, you know, advance into all of these different platforms?
1: So the first thing that we're trying to do is strengthen the core of our journalism, invest in storytelling in Hindi, in English, on our regional channels, in business news. That is core and that is most important. That's what takes up the bulk of our resources, that takes up the bulk of our energy and effort, and that is more important than anything else. But given the fact that linear television is under pressure, and that is a headwind you can't deny, and given the fact that AI is eating up a lot of Google search and Discover traffic, and that again is a reality that you can't deny, how do you build a sustainable business which keeps in mind these realities? It is there that I think, Neeta, that we need to build up an NDTV multiverse. So we've got NDTV World. I think this is my biggest passion project. It defines the scale of our ambition. India doesn't have a global media brand. India doesn't have the equivalent of a CNN or an Al Jazeera or a TRT or even a CGTN. There is only one Indian media brand that is capable of being India's voice to the world and the world's window to India. That is NDTV. when you travel abroad, wherever you go, Europe, Africa, the Middle East, America, they know of NDTV. Mm-hmm. And you currently have the resources, you have the wherewithal, you have the ambition and the appetite to build out India's media window to the rest of the world. That's what we're building on. It also makes sense from a business perspective, because whatever eyeballs you get, they're all international, so it's dollar denominated, it's not in Indian rupees. That's the advantage in terms of building that out. But outside of just the revenue that comes with it, this signals the ambition and the determination of the new NDTV to build a global media platform. It won't happen in 1 year, it may not even happen in two, it'll take time. But that is something that we're committed to, you know, having, you know, this is almost 1/6 of humanity. And therefore, what do these people think? What's happening inside India? What does the diaspora think? How is the world looking at India? How is India looking at the world? This is a central idea to what we're hoping to build in NDTV. And we're taking steps in that direction. We're not going headlong and, you know, booking all the investments in the first few months. We're doing it step by step, by and by. But this is very important. Similarly, NDTV Good Times, movies, entertainment, lifestyle. We had a fantastic show called Band Baja Bride, which was how Sabyasachi became Sabyasachi. I mean, he was on Band Baja Bride. He was on the jury of the NDTV Art Awards recently, and he says, I hope you know. I said, of course I do, but he said, I hope you know that I used to do Band Baja Bride, and that's how people got to know of the legend of Sabyasachi. We're bringing that back. There's Highway on My Plate, the Food Awards. The idea, Neeta, is to build strong communities. They can be big communities, they can be small, they can be small like golf, they can be even smaller and niche like art and photography, but these are important communities. News organizations need to build strong communities, because you're not going to get anything from Google search and discover. You have to have some value proposition that brings people to you. That is very, very important.
2: किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ अलग है, एडिटर इन चीफ अलग है, उन दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, कई बार क्लैश भी होता है. आपके साथ क्या है कि आप एडिटर एंड सीईओ दोनों का दायित्व संभाल रहे हैं, तो कई बार क्या एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का, या डिसएडवांटेज भी होता है कि प्रेशर ज़्यादा आ जाता है? एडवांटेज है कि यार कोई है नहीं, मतलब मैं ही जो डिसीजन लेना है, क्या मतलब आपको क्या
1: यार, है? मैं एक पत्रकार हूँ
2: जी,
1: मेरे लिए पत्रकारिता सबसे ज़्यादा अहम है. पैसा भी कमाएंगे लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे, और जो काम करेंगे सच्चाई से करेंगे, अच्छे से करेंगे और मेहनत से करेंगे. जितने भी हमने बातें कही, अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं, वहाँ पे अन्वीक्षा कर रहे हैं. अन्वीक्षा इज़ इंक्वायरी, इट्स थॉट, इट्स डायलॉग, इट्स डिलिबरेशन. वील टेक अन्वीक्षा टू दुबई, वील टेक इट टू यूरोप, वील टेक इट टू अमेरिका, वील टेक इट टू न्यूजीलैंड, वील टेक इट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड वील टॉक अबाउट वॉट इंडिया इज डूइंग ग्लोबली एंड हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया. एंड येस, वी विल मेक मनी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट थॉट, इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट डिलिबरेशन. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक मनी थ्रू लेजिटिमेट मीन्स. आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट एट द कोर. आई मीन, इफ यू वॉन्टेड टू गेट अ प्योर प्ले सीईओ, यू कैन फाइंड समबडी हु कम्स फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, यू गॉट समबडी हु कम्स फ्रॉम अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड. माई जॉब इज टू इन्श्योर द न्यूज स्टेज क्लीन, एंड आई विल डू एज मच एज आई कैन to the best of my ability to ensure it stays that
3: right, way. Right. I want to quickly ask two quick questions, because time, I don't want to miss any question. One is 16 months almost, and how do you rate your outcomes?
1: मैं अपने आप को सर्टिफिकेट दूं, दैट इज मीनिंगलेस, राइट?
3: No, I mean, what would you say are your biggest highs and lows, if you have to say?
1: I think the high is that NDTV matters. NDTV has mind space, it's being spoken of. Nobody can deny the strength that they're seeing in the brand, the vitality that they're seeing in the brand, the ideas, the coverage of news, the coverage of elections, the coverage of budget, Davos. In some ways, because of problems beyond any professional's control, NDTV had fallen off people's mind space, right? Mm-hmm. The fact that you've penetrated mind space, that people are looking at you, engaging with you, caring about what you do, that I think is most important. Everything else is building on it. All of what I just mentioned, Rohit, the art awards, the photography awards, the food awards, or even the coverage that we do. We did an India-Japan summit recently. These are things that take time to build up. You know, the India Today Conclave, for example, wasn't built in one day. It's year after year, when you do what you do, people get some confidence in your team's ability to pull it off. That's when it really becomes a big deal. We did golf, for example, last year with PGTI. we probably didn't make as much money as we could have or should have on that IP. That's because people didn't know. Yeah, maybe 20 years ago, NDTV should do golf. Can they do it now? Are they capable of pulling it off? It is when they see that they start to believe. My job is to ensure that they like what they see. Once they have faith in your ability to deliver, everything else follows. You build the content, you deliver, like we did the Business Leadership Awards this year. The who's who of corporate India was there, the finance minister was there. Once you've seen that, next year when our teams go out and say, we are back again with the Business Leadership Awards, people will take that much more seriously. This year, I'm all the rank, kar payenge, nahin kar payenge, pata nahin. And it's true, it's legitimate. I mean, how can you take away those concerns? Those are real concerns. Therefore, I say, it's not what I say, it's what Team NDTV does. And people will form their opinion, not on the basis of what our critics or naysayers say, but on the basis of what they see.
0: You spoke about India Today, and that's a company that you worked with for several years. And recently, they laid off about 120 employees. And this is one of those firms which is not seeing red in their balance sheets yet. Now, with declining TV news viewership, mounting losses, are such layoffs going to be a reality across TV channels soon? Is that happening at NDTV?
1: I can't comment on what India Today has done. That newsroom is very dear to me. I've spent 2+ decades over there, from the promoters to the drivers to the housekeeping staff. These are people who've been part of my family and part of my ecosystem. I care for them very deeply, and I am very close to them emotionally even now. It's very sad that they had to let some people go. I can't comment on that at all. It's a decision that the management has to take. The difference with NDTV at this time, Anita, is that we're coming from a low base. Given how big this brand is, in revenue, NDTV had really fallen off the cliff for the TV channels, whether it's in Hindi or English or business. As we build our editorial muscle, as we build our sales machine, we can. What we're trying to do is win business back, win back what is legitimately worthy of being with NDTV. The other big media brands are making much more money at this time because they have stronger muscles. Like, we didn't have a connected TV team. We didn't have a YouTube sales team. We didn't have an international sales channel. So as we build that sales machine out, you start monetizing the presence of those sales resources in these functions. So that's how it's growing. But yes, you're absolutely right. Times are tough. Media economics are deeply flawed, not just in India, but internationally. And the jobs of people in management in any of these organizations is to be extremely careful about how they spend money, what they spend on, to try and ensure that each rupee that is spent is stretched as much as is possible, that it delivers the maximum possible return on investment, and that we're able to chart out a viable path to profitability at the earliest possible. We'll do this the right way. We'll put in the hard yards to try and make it happen. And we will work towards ensuring that we're financially independent and viable.
0: But realistically, how many years are you giving yourself for this turnaround?
1: You know, that's an internal conversation. And I realize that I'll ultimately be judged as chief executive, not by what I say in this interview, but by the financial returns our organization delivers quarter after quarter in the quarters ahead. That is the ultimate litmus test. It's a test that I am committed to deliver on. And we're working extremely hard across a whole bunch of ideas, some of which we've discussed and some of which we haven't, to try and build out alternate revenue streams. It's not about blackmail. If you want this interview, pay me money. If you don't pay me, I won't do this. That's not the way to do it. There are proper ways of making money legitimately by building out these kind of ecosystems that I spoke about, communities that I spoke about, IPs that I spoke of. That's how you build your business.
2: लेकिन एक छोटा सा सवाल है, इंडस्ट्री में तमाम लोगों का ये मानना है कि जब से आप एनडीटीवी में आए हैं तो किसी खास संस्थान से, खास विशेष नाम मैं नहीं लूँगा, वहाँ से इधर एनडीटीवी आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्या कुछ ऐसा है कि उनको एडवांटेज मिल रहा है, या अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है?
1: जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे पास इस देश की हर संस्थान से कई सारे पत्रकारों ने ज्वाइन किया है, और अभी भी जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हम ये नहीं देखते उनके बायोडाटा में कि वो इस वक्त कहाँ पे काम कर रहे हैं या वो किसी एक विशेष संस्थान में है या नहीं. हम उनका काम देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, हम उनके स्किल्स को प्रोफाइल करते हैं. और पंकज, मेरा ये सौभाग्य है और एनडीटीवी का सौभाग्य है कि इतने अच्छे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया, क्योंकि एनडीटीवी कभी भी कोई एक शख्स नहीं बना सकता। अगर ये बनेगा ब्रांड एक बार फिर से खड़ा होगा तो इसमें अनेकों लोगों की मेहनत, उनकी लगन, उनका प्रयास जुड़ेगा। और हमने वही कोशिश की है कि जो भी कोई स्ट्रैटेजी में हो, रेवेन्यू में हो, सेल्स प्लानिंग में हो, कोई भी फंक्शन हो, एंकर हो, एडिटर हो, टीवी में हो, पीछे हो, हम बेस्ट आदमी को लें या बेस्ट महिला को लें और एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, क्या है, एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको इज्जत के भाव से ट्रीट किया जाए, सबको रिस्पेक्ट मिले, सबको प्रोफेशनली ग्रो करने का मौका मिले। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कामयाबी मिले ना मिले ये इतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस रास्ते पे चले उस रास्ते में नेकी थी या नहीं, सच्चाई थी या नहीं, आपने अच्छे से काम किया नहीं। मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि जब लोग, जब आप सामने नहीं होते, आपके पीठ पीछे आपकी टीम क्या बोलती है, ये ज़्यादा अहम है। अगर आपके सामने, अगर आपके बॉस यहाँ पे खड़े हों, उनके सामने तो आप उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन जब ये कैमरा बंद हो जाए, जब कोई है नहीं, तब आप उनके बारे में क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ऐसी पूंजी है जो कि अमूल्य है, वो पूंजी सबसे ज़रूरी है। मेरे पिता पंकज ये कहा करते थे कि कामयाबी इससे सुनिश्चित नहीं होती कि आपने कितने लोगों का करियर बिगाड़ा, कामयाबी इससे तय होती है कि आपने कितने लोगों का करियर बनाया, कितने लोग आपको गुरु मानते हैं या आपके बारे में अच्छी चीज़ें कहते हैं या कहते हैं कि आपसे उन्होंने कुछ सीखा या जाना या देखा। वो एक ऐसी पूंजी है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और वही मेरी ज़िंदगी की असली पूंजी है। वही पूंजी कमाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ।
3: सो राहुल, टेल मी, इज़ देयर एनीथिंग दैट बॉदर्स यू द मोस्ट? व्हाट इज़ दैट थिंग दैट bothers you as editor and CEO of NDTV the most?
1: I think the fact that AI is playing the kind of role that it is, Rohil, and that Google search and discover traffic is coming down almost week after week, not just month on month, is a huge concern for all digital news publishers. NDTV is luckier than most in the sense that we have a lot of direct traffic that comes straight to the page, whether it's our homepage or it's the app, and a lot of people come directly and engage with the website. But that's not something that we take for granted. The fact that there is a massive downturn in Google search traffic and Discover traffic, and that this is upending all notions of the digital business as we know it, that's of concern. So moving to build the kind of multiverse that I described earlier with speed and purpose, so that before you get to a Google Zero world, you've built out a multiverse which can sustain you. Because when algorithms decide where brands go or where news goes or where users go, the only thing a media organization has is trust. It has credibility. It has the belief of its consumers that bring those consumers back to the brand's homepage or app. That is all that you have. Building that into us, I know it's like time is running out. We're heading towards Google Zero. We're trying to rebuild all that we're trying to build. And we're trying to do it really quickly. So before we get to a Google Zero world, what have you got which can last in a Google Zero scenario?
2: Okay. एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की आपने बात करी, और अभी हम जो बात करें कि AI की, तो मेरे दो सवाल आपस में जैसे मिले हुए हैं कि AI न्यूज़ रूम में लगातार चल रहा है, तो AI को लेकर NDTV क्या कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चुनौती और बढ़ेगी, तो किस तरह से ऐसा कोई है कि जो AI कर सकता है, मतलब जो आदमी कर सकता है वो AI नहीं कर पाएगा, एक तो ये, दूसरा, और ऐसे माहौल में जब AI बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ है, ट्रस्ट की आपने बात करी, तो कैसे मेंटेन रखेगा NDTV उसे?
1: NDTV में हम लोग बहुत AI यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़ प्रोसेसेस में, टेक्स्ट को ग्राफिक बनाने में, एडिटिंग में, आपके अलग अलग फॉर्मेट्स को रीपर्पस करने में। पहले बहुत सारा टाइम ख़राब होता था कि आप पहले वर्टिकल वीडियो बना रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो, तो कई सारी चीज़ों में आप AI के इस्तेमाल से काम को जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस में, HR में, लीगल में, कई सारी चीज़ें जिसमें बहुत वक्त लगता था, वो अब कम वक्त में AI की सहायता से की जा सकती है। मैं AI एंकर्स में विश्वास नहीं करता। मुझे मालूम है कई न्यूज़ रूम्स हैं जहाँ पर कहते हैं कि एंकर्स हमारे AI वाले हैं।
3: आप ही ने लाए थे शायद?
1: मेरे को लगता है कि जो भी खबरें बता रहा है वो इंसान होना चाहिए, क्योंकि आप मानेंगे, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आप लोग हर तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अब मैंने कैसे जवाब दिया, उस जवाब में विश्वसनीयता थी या नहीं, ये तो जो दर्शक है वो देखेगा और तय करेगा ना। अगर यहाँ AI मशीन बैठ के या कोई महिला या पुरुष AI एंकर आके खबरें बता दे,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Sugar prices soar, spark political clash. Congress, UBT, Sena blame ethanol diversion for tighter supplies, while the government rejects the charge and says ethanol is not driving the price rise. Political spat over Rahul Gandhi's Pune student outreach. BJP alleges Congress brought a paid crowd and influencers. Congress denies charges, says students turned up voluntarily to hear Rahul Gandhi and share his views. After TVK ministers project Chief Minister Vijay as the next Prime Minister, Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore hits back and said TVK ministers are still in mindset of the fan club. He also stressed that Congress approach is different than TVK. And NHRC has directed the Punjab government to probe the allegations that Chief Minister Bhagwant Mann's wife demanded 5 crore to suppress a rape case. CM's wife denies any sort of such claims and says she's ready to face all investigation. Prime Minister Narendra Modi interacted with the chief executive orders and officers and founders of 20 space startups in New Delhi. During the interaction, Prime Minister called for wider application of space technology to improve the lives of people. And another TVK minister tacitly pitching Vijay as the Prime Minister. Finance Minister Mary Wilson, now our leader, is going to the next stage, that is the national level. That is the word coming in from one of the leaders in the state of Tamil Nadu. And of course, it's coming in for the newly sworn-in Chief Minister Vijay. She has said that one leader is establishing in national level, none other than our Chief Minister, our brother only. It is very clear mandate. See in 2029 how big the change would really look like. Once again, pitching him as the Prime Ministerial candidate.
1: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
0: And that's the word coming in, that Prime Minister's pitch, Vijay could be the next Prime Minister. That's the pitch coming in from his own colleagues, from his own cabinet ministers. And not the first time that a pitch of this nature has been made. And Congress has hit back at TVK after TVK's pitch for Vijay as the Prime Minister. Congress MP and party's Tamil Nadu chief Manikam Tagore has hit back at TVK ministers and said that they are still in the fan club mode. He also added that the Congress way of working is very different from TVK, and TVK ministers have backed Vijay for Prime Minister's face. Tamil Nadu Minister K. Sengotian has said that CM Vijay has capabilities to rule the nation in the future. Another Tamil Nadu minister, Jagdishwari, has said that today's CM is tomorrow's Prime Minister.
2: அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல் அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
3: புரட்சித் தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சித் தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
4: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய மாண்பு
5: அதுதான் நம்ம தளபதி எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: And BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team with Rahul Gandhi. On the other hand, he continues to organize Chhatron Ki Goonj across the country. So both political parties, the key national political parties, are making an outreach to the younger generation. Now the BJP teams brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tare and OP Chaudhary, a mix of young leadership, organizational experience and state level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking conversations to campuses, government schools, social media, emerging spaces like AI and skilling. Rahul Gandhi, on the other hand, is intensifying his youth outreach through their flagship program, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence and aspiration at the heart of this message.
6: नहीं, वो जो gap हो गया है, वो gap पूरा रहेंगे, क्योंकि जेन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जेन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जेन जी रूठे हुए हैं।
7: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like NEET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
8: It's a big irony that on one hand they keep talking bad about the Gen Z. Even Prime Minister himself has come out with a lot of criticism, and the entire cabinet and ministers have been criticizing the Gen Zs for so long. And now they have realized they have to work with them. This only goes to show that BJP doesn't care. It is only an electoral gimmick.
0: And politics erupts over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out at Rahul Gandhi's event, alleging that the party brought a paid crowd, paid influencers to attend the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying that there is no real impact as far as the youth is concerned. But Congress has hit back, rejecting BJP charges. Congress says that the students and youth came to hear Rahul Gandhi to share his views, and no one was brought to the event by offering money.
9: Maharashtra ki jo Gen Z, Maharashtra ke jo yuva aaj is maidan par the, 25,000 log, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
10: ये जो माहौल है, अब युवा इस देश का, इस देश के बच्चे, इस देश के स्टूडेंट राहुल जी को सुनने के लिए और राहुल जी को आपने बात को बताने के लिए आए। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि हमने पैसे देकर लाया है, उन बेवकूफ को बताओ या आकर देखे कि पैसे देकर आए हैं या खुद आए हैं, इसका जवाब उनको यही मिल जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो होते हैं, झूठ नैरेटिव फिक्स करने वाले होते हैं, उसको कितना भी आप कोशिश करो, अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे नहीं, राहुल गांधी तुमको रोकेगा, तुम राहुल गांधी को रोक नहीं सकते।
11: सुना है आजकल राहुल गांधी की नकल करने के लिए काफी बीजेपी के लोग सामने आए हैं, मोहन भागवत जी ने करके देख लिए, अशर क्या वो आपके सामने है। नकल करने के लिए ईमानदारी की शक्ल भी लगती है, वो बीजेपी में किसी के पास है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देवेंद्र जी आप क्या जवाब दोगे अगर कोई खड़ा होकर पूछ लेगा कि सर्पदंश से आश्रमशाला में बच्चे मर गए आपने क्या किया। एमपीएससी में फूड इंस्पेक्टर का पेपर टूट जाता है, फार्मासिस्ट का पेपर लीक हो जाता है, क्या जवाब दोगे। जनजी तो सवाल करेगी।
0: A Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with message saying, and I'm quoting, Silent Guardian. Take a look at this report filed by my colleague Deeksha.
12: Rahul Gandhi, leader of opposition or the real-life Batman? Posters have appeared outside of 24 Akbar Road talking about how Rahul Gandhi could be the real-life Batman. Now let's take off that cover. There are posters talking about him as a watchful protector and that the leader of opposition Rahul Gandhi is now the real life Batman. These have been posted after the pellet gun injuries surfaced and Rahul Gandhi pushed to make a move for an FIR being filed. Now the government capitulated and the Delhi police has finally filed an FIR. So is he the silent guardian? Are we talking about Rahul Gandhi being a real life Batman? Who is Batman, you ask? There are so many things we can talk about here. It is all about Rahul Gandhi's intense involvement in the student protests and then talking about all the problems that the students faced.
0: Well, interesting political analogy, keeping the Gen Z in mind. Congress leader Pawan Khera has praised the image, saying, not all heroes wear capes and some wear a white t-shirt. BJP has hit back. Listen into the voices.
13: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
14: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is. Because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: All right, some latest news coming in. An incident of assault on a doctor has come to light in the famous Bhanu Jyoth Hospital of Kalyan East. When Dr. Yogendra Jaiswal was explaining to the patient about his illness, the patient's son, Vineet Deshmukh, entered the cabin and violently attacked him. FIR has been registered in Kolsewari Police. That's the word coming in. The image is on your screen right now. Another doctor on the duty has been assaulted. You'd remember an instance of this nature in Maharashtra has been reported earlier also, when it was a cooperator that was involved. And right now, this incident coming to light where another doctor on duty has been assaulted. Multiple doctors, especially working at government hospitals, have complained that they fear for their physical safety, they fear for their life, and attacks of such nature, physical attacks of such nature, are not uncommon. All right, that's the word really coming in, that this is a fresh attack that has happened on a doctor. Let's now move on and have a look at another piece of breaking news which is coming in at this point. And this is SP Chief who has hit out over Marathi mandate. Akhilesh has said that respect everyone, mother tongue. Akhilesh has also said that the violation of constitutional rights has happened and BJP is creating a pressure on the poor people. It's further goes on to say Akhilesh Yadav has made a statement that government should have a big heart and a big mind. That's the word coming in. SP Chief Akhilesh Yadav, they're giving a statement that government should have a big heart and a big mind and they should not create pressure on the poor people. Violation of constitutional rights of individuals is not something that is respected and acceptable, and everybody's mother tongue should be respected.
15: अरे क्या बताओ यार, मुझे मराठी नहीं आता, अच्छा, अभी मुंबई में हो गया, बोलते हैं कि जो मराठी बोलेगा वही गाड़ी चलाएगा, कहीं तो लाइसेंस जमा कर लेंगे, 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर देंगे और 10-15 हजार रुपए की फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या बताओ, हम लोग इतना थोड़ी कमाते हैं कि 10-15 हजार रुपए की फाइन और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए कैंसिल करेंगे।
16: अच्छा,
15: तो किस वजह से चलाए बताओ,
16: तो
15: आपका मन ही नहीं करता यार।
16: तो आप ऐसे बैठे रहोगे क्या?
15: आप क्या कर सकते हैं आप बताइए, अगर मैं चलाने जाऊंगा कहीं
16: तो आपकी क्या राय है उधर, क्या राय है सरकार से?
15: मैं चाहता हूँ कि यार अभी हम लोग गांव के लोग हैं।
16: अच्छा,
15: कोई यूपी बिहार हर जगह जगह से लोग आया हुआ है। अब बताओ, अगर कोई इंसान से कहोगे कि तुम 1 महीने के अंदर मराठी सीख जाओ, जिसको हिंदी पढ़ना नहीं सही से आता है, वो कैसे 1 महीने में मराठी सीख सकता? प्रॉपर टाइम दिया जाए कि इतने दिन आपको दिया जाता है, अगर मराठी सीख जाते हो तो गाड़ी चला लोगे, अन्यथा नहीं।
16: सही है,
15: पर अभी क्या बोलूं यार, टाइम 1 महीने का टाइम, 1 महीने में कोई मराठी सीख सकता क्या?
17: भाई साहब मराठी नहीं आता मेरे को, तो मलाड छपे पे मेरा लाइसेंस ले लिया और 25 हजार मांगा है। आरटीओ ने बोला था कि 25 हजार दो, लेके जाओ चालाना भर के।
18: लाइसेंस दे दिया है, जमा कर लो।
17: लाइसेंस जमा कर लिया, वो सस्पेंड कर दिया,
18: गाड़ी छोड़ दिया। अभी
17: गाड़ी तो दे दिया।
16: क्या बोला था तुमको
17: मराठी में? बोला था कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला था मराठी में वो?
16: 3 महीने का टाइम दिया है कि नहीं दिया है?
17: 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने तक मराठी सीख के और आओ और लेके जाओ।
16: अच्छा,
17: अगर नहीं आया मराठी तो वो लाइसेंस के साथ में परमिट भी कैंसिल।
18: अभी फाइन कितना किया है कि नहीं किया?
17: अभी 25 हजार मांगा था।
16: अब क्या करोगे तुम?
17: अब कुछ नहीं करेंगे, मराठी सीखेंगे, मराठी सीख के जाएंगे दोबारा से, दोबारा जाके फिर करवाएंगे।
16: ठीक है भैया।
0: All right, my colleague Abhishek from Mumbai spoke to a few auto drivers on the Marathi language row. Listen in as to what these people have to say.
19: The implementation of Marathi mandate to drivers of auto and taxi in the cities across Maharashtra has begun, and especially speaking about Mumbai, the drives are being conducted. And in the middle of this, Akhilesh Yadav, the former Chief Minister of Uttar Pradesh, has taken a direct attack on the Maharashtra BJP-led government and has put across serious questions on this entire implementation and termed it as a mere politics over language. We have with us many rickshaw and auto drivers here. Let's try and understand what exactly do they feel about this recent implementation on the field. Akhilesh Yadav hai, Uttar Pradesh ke purv mukhyamantri, unhone पोस्ट किया है और कहा है कि ये तो भाषा के नाम पे राजनीति हो रही है। हमारे जो दोस्त भाई वहाँ काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से परेशान किया जा रहा है, रोज़गार एक दिन का कमा के कोई घर जाता है, कितनी तकलीफ़ होती है?
20: बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एकाएक जो है चालू हो गया, इससे थोड़ा दिक्कत तो आ ही गया है।
21: इस प्रजातंत्र राज्य के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है क्या कि मार के सिखाया जाए? हाँ, लोगों को बोला जाए, बढ़ाया जाए, सीखने की समय दिया जाए। यदि मान लीजिए मैं यहाँ से पंजाब काम कर रहा हूँ या गया हूँ बाय द वे, तो आप तो ये बोलेंगे पंजाबी क्यों तुमको नहीं आती, चलो निकलो इधर से। गुजरात गया तो गुजरात बोलेगा चलो निकलो इधर से। तो प्रजातंत्र राज्य का मतलब क्या हुआ?
20: सर अन्याय हो रहा है और ये सब गलत बात है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन नहीं आ सकता, क्या करेंगे? अभी
19: कोशिश करने के बाद भी दिक्कत आई तो क्या क्या कहेंगे आप?
20: क्या कहेंगे सर, अभी लास्ट ऑब्जेक्शन बचा है गांव जाने का, और क्या करेंगे फिर?
22: अभी तो मैं गांव गया तो अभी आया, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ न बना, अभी सीख रहा हूं, बस वही है टाइम चाहिए।
23: मैं तो मालिक यही बोलूँगा कि मराठी तो हमको बोलने आएगा नहीं, न मराठी बोलूँगा, हिंदी भोजपुरी बोलूँगा, रहने देंगे नहीं, अपना अपना रिक्शा उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, वहीं चले जाएंगे मैं मालिक।
0: Right, so that's the language controversy brewing in the state of Maharashtra. Shifting our focus to this war of words between Baba Ramdev and member of parliament and actor Kangana Ranaut. Baba Ramdev has made a fresh statement. He has said, and I'm quoting, "The people of this country know who Swami Ramdev is and what his contribution has been. I do not want to make any remarks about such people of such stature." Both of them have been making remarks about each other in the public domain. Listen in to what Baba Ramdev said recently.
24: जिन लोगों का अभी क्या बोलूं मैं, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता,
1: स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
0: Well, a lot more lined up on this edition here on NDTV on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: beyond the haze of the digital world where criminals disappear, there is another force at work, equally silent, equally ferocious in its intent. While criminals use the dark net to hide, investigators troll this hidden world looking for clues to their whereabouts. The cyber sleuths painstakingly follow trails that may cross regions, countries, identities, and time zones. It is relentless pursuit, unpeeling the layers of the internet, unmasking the dark side of the digital world. So what exactly is this hidden internet? How does it work? Who is using it? And how much of the crime happening here can investigators actually trace? This is the world beneath the internet that you know. The internet most people use every day is the World Wide Web. If a crime is committed there, investigators often have relatively straightforward methods to identify suspects. But much of the concern surrounding cybercrime today focuses on the dark net, which cannot be accessed through standard browsers like Chrome or Safari. It requires special software, such as the Tor, the Onion router. Just as an onion has many layers, users' identities are concealed behind multiple layers of routing and encryption. This anonymity is one reason the technology has attracted criminal misuse.
1: देखिए जो इंटरनेट है वो एक तरह से आइसबर्ग है जो उसका पोर्शन आप देखते हैं जिसको हम सरफेस नेट बोलते हैं वो लगभग 5% या 10% के बीच में है जिसमें आपका सारा गूगल सारा यूट्यूब सारी टाइप की सरफेस वेबसाइट्स ब्राउजिंग सब कुछ होता है और इसके लिए कॉमन ब्राउजर्स जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज होते हैं लगभग 80% से ज़्यादा है इंटरनेट का वो पोर्शन जिसको हम डीप वेब बोलते हैं या डीप नेट बोलते हैं डीप नेट वो पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको स्पेशल क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं जैसे कि लॉग इन पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसमें आपके सारे इंश्योरेंस रिकॉर्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स ईमेल्स इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल ब्राउजर की ज़रूरत नहीं होती है डार्क नेट वो लगभग 7 से 8% ऐसा पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर चाहिए जिसको हम द अनियन राउटर कहते हैं टॉर या द अनियन राउटर क्यों उसको अनियन राउटर कहा जाता है क्योंकि वो ब्राउजर आपकी एनोनिमिटी एंश्योर करता है
0: एंड इट इज दिस एनोनिमिटी दैट मेक्स द डार्क नेट सो डिफिकल्ट टू पुलिस अ यूजर्स रियल लोकेशन कैन बी कंसील्ड The digital trail can pass through multiple countries before reaching its destination.
1: Tor में अगर कोई आपको मैसेज अपने नेबर को भी भेजना है जो आपके बगल में बैठा हुआ तो वो 20 कंट्रीज के थ्रू हॉप ऑन होते हुए जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रॉक्सी मल्टी प्रॉक्सी के प्रोसेस से आते हुए आपके नेबर के पास जाएगा तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा तो बैक ट्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इसीलिए इसको द अनियन राउटर कहते हैं
0: बट व्हाट डज दिस हिडन वर्ल्ड लुक लाइक
2: तो यहाँ पर लेफ्ट एंड सोल्ड यहाँ पर सोल्ड कितना बता रहा है लेफ्ट यूनिट मतलब ये सोल्ड हो
3: चुका
2: सोल्ड हो चुका
0: दिस इज दिलशान शेख अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट सिंस चाइल्डहुड He became deeply interested in understanding the internet. What started as curiosity eventually brought him onto the radar of cyber experts. Today he assists law enforcement as an ethical hacker. What Dilshan showed us on the dark net may surprise you.
2: इसमें से हम एक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे आज और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ इजीली हमें अवेलेबल मिलेगी और हम किस तरीके से इजीली किसी का भी डेटा या कुछ भी चीज़ हम इजीली बाय कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो लीक डेटाबेस होते हैं आईडी पासवर्ड के साथ वो हम यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। इनके नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ वो हिडन नेटवर्क है, वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं बेसिकली कि वो क्या कर रहा है बंदा, उनका नाम क्या है। यहाँ पर नाम जो होता है एक यूज़र आईडी के नाम पे होता है एंड दैट्स ऑल। इसमें ना कोई केवाईसी होती है ना कोई मेल दिया जाता है। आप एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उससे पासवर्ड बना दीजिए, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा।
3: पेमेंट कैसे होती है
2: इसमें? जो पेमेंट होता है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, बिटकॉइंस वगैरह में। तो ये सारे लॉग्स, ये देखिए पेपल के लॉग्स है इसके अंदर, तो ये सारे लॉग्स होते हैं बैकएंड के, जो अटैकर के लिए, जो हैकर्स के लिए बहुत, जो स्कैमर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये सारा डेटा होता है। ये आईडी कार्ड है जो अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ के, जो यूज़ होता है। इसको फ्रॉड के तौर पे आप यूज़ कर लो, इसको सिम कार्ड निकालने के तौर पे यूज़ कर लो। रियल कार्ड
3: और कितना बिक चुका है?
2: इतने यूनिट
3: 22,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो ये डार्क नेट पे आधार कार्ड अवेलेबल है।
2: हाँ।
3: लोगों के
2: लेकिन 50 प्लस इंडियन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ऑल वैलिड विद ऑल इंफॉर्मेशन। एक यूजर आईडी में डालता हूँ सही है,
3: मतलब आपका ईमेल,
2: हाँ, यहाँ पर
3: अकाउंट कब उसका पासवर्ड लीक हुआ है।
2: देखिए एक जगह ब्रीच हुआ है। अगर मुझे इनका, देखिए अभी यहाँ से पासवर्ड मुझे शो करते हैं, मुझे सर्विस पाई करनी पड़ेगी तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली उसे ये पता
3: तो
2: नहीं होगा,
3: ये लीक हो चुका है, तो आप
2: उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया हुआ इन शॉर्ट, तो आई कैन गेट एक्सेस टू द अकाउंट। एंड अराउंड 13 बिलियन अकाउंट इन आ लीक डेटाबेस। ठीक है,
3: तो ये बिलियन अकाउंट का लीक डेटाबेस इनके पास।
2: करेक्ट, अभी देखिए ये काउंटर फीडिंग नोट्स है, एच क्यू प्रिंट्स करके है नाम से। तो ये डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल। अभी फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना है तो ये एक एक्स वाई जेड वेबसाइट है, $100 ले रहा है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो,
3: टिकटॉक,
2: ठीक है। ये यहाँ पर अगर आपको अनोनमस नंबर्स वगैरह बाय करने हैं, जो भी सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हैं, तो ये नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट नाउ के अकाउंट है, जो टेक्स्ट नाउ वहाँ पर अलग होता है, तो यहाँ पर मॉडल मतलब किसी के नाम का आपको मिल जाएगा, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड, एक किस्म का डिजिटल सिम ही बोल सकते हैं,
3: जो साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल
2: यूज करते हैं।
3: और ये कितने में बिक रहा है?
2: $10, मतलब इंडियन ₹700। इसके पीछे कौन है वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है सिर्फ यूजर नेम होता है।
0: What Dilshan warns us about has recently happened with Bank of Baroda data. Bank of Baroda had to initiate a forensic investigation into a breach involving critical data, with reports of around 1 terabyte of data being leaked. The leaked material allegedly includes customer information, identity documents, loan papers, and internal audit reports. This incident adds to a series of cybersecurity breaches involving major Indian companies and institutions in recent months. Thousands of websites here openly operate as marketplaces for criminal activity. Transactions are conducted through cryptocurrency, making it difficult for law enforcement agencies to trace the people behind them. Maharashtra Cyber says its investigations reveal just how large this underground ecosystem can be.
3: Sir, ye screen pe hum kya dekh rahe hain is waqt?
4: मैम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लाइव जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड। सो यू कैन सी एज ऑफ नाउ टोटल अटैक्स व्हिच इज हैपनिंग करेंटली अक्रॉस वर्ल्ड, व्हिच इज द नंबर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 10,16,01,608 अटैक्स आर हैपनिंग।
3: ये लाइव फीड इस वक्त
4: yes,
3: हम देख रहे हैं।
4: यस,
3: यानी कि एक तरफ जिन कंट्रीज में वॉर छिड़ी हुई है या जो इसका टारगेट बन रहे हैं
4: yes.
3: उसी समय में साइबर अटैक भी
4: exactly.
3: उन पे किस तरह से हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं।
4: डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डार्क वेब पे, सो दीज आर द फ्यू प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट दे आर सेलिंग, ड्रग्स, कार्डिंग डिटेल, काउंटरफिट करेंसी, सो दीज आर द नंबर ऑफ डार्क वेब लिस्टिंग्स। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि ड्रग्स सेल हो रहे हैं डार्क वेब पे मीडिया।

0: For Maharashtra Cyber, tracking offenders who hide behind anonymity remains one of law enforcement's toughest tasks. Take the recent example of bomb threat emails. Cyber investigators say such emails may sometimes be routed through anonymity-focused services on the dark web. According to investigators, anti-social elements and terror-linked actors have also attempted to misuse such digital platforms.
1: Dark web ke jo criminals hain, wo ek dark web ki anonymous email service use kare. जिस सर्विस का यूज़ करने का उन्हें बेनिफिट ये होता है कि उनके ईमेल्स को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कुछ सालों पहले जीमेल आउटलुक का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे और वो इजीली ट्रेस भी कर सकती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। बट नाउ दे आर यूजिंग द एनोनिमस ईमेल सर्विस विच इज़ अवेलेबल ऑन डार्क वेब। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसी के तरह कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डार्क वेब पे जिसका इस्तेमाल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं।
2: ओके, तो ये डार्क वेब नहीं है लेकिन डार्क वेब के फीचर
1: से जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एक फीचर है इसके, इजीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिकोड नहीं कर पाते इनके SMS।
0: For investigators, the challenge is not only identifying what is happening online, but finding the people behind it. This is a dark web chat room, where users operating under fake identities interact anonymously, often attempting to buy or sell illegal goods and services.
3: क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्रिमिनल के ऐसे सोचना चाहिए। उस हिसाब से हमें क्या करना है कि ऐसे ये जो चल रही है जो क्रिमिनल है तो हमने भी उस क्रिमिनल के जैसे मैंने चैटिंग स्टार्ट कर दी तो अगर यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई देता है तो कौन, तो फिर मैं उसके साथ जेन्युइन चैट करूंगा।
2: आप उसके साथ यहाँ पे इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो
3: कुछ डेटा उसका ओरिजिनल डेटा रिवील कर दे और उस अगर कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक वो कर दे तो फिर हम उस तक पहुँच सकते हैं। उनको भी मालूम है, क्रिमिनल को भी मालूम है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पकड़ा नहीं जाए, पर हमें भी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में जान के कि अगर उन्होंने टॉर भी यूज़ किया है तो वो टॉर में फिर जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल की सोच के जैसे हम देखेंगे तो हाँ, तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल के पास अगर हमें जाना है तो उससे उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा।

0: In this underground marketplace, firearms, explosives, poison, and drugs are reportedly traded with few identity checks.
1: तो मैं गन्स नॉर्मल सर्च किया और हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे सामने आ गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एम्युनिशन के, ड्रोन्स के, यूएवीज के, एक्सप्लोजिव्स के, गन्स के, नाइव्स. तो नॉर्मल मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी है कि मेरा नाम क्या है. वो मैं गलत डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैकब डाल सकता हूँ, मेरा नाम कुछ और होगा.
2: और इसके साथ साथ जो पेमेंट मोड है वो क्रिप्टो है, तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल को.
1: यस, क्रिप्टो अपने आप में एक एड्रेस की तरह होता है. वो आपको एड्रेस से पता चलेगा उसके पीछे पर्सन कौन है. तो वॉलेट प्राइवेट वॉलेट हो सकते हैं, वो यूज कर रहा होगा, जिसे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा.
2: पर यहाँ पे लोग स्कैम भी तो होते होंगे.
1: हाँ, होता है.
2: अगर वॉलेट लिंक किया तो स्कैमर्स तो भरे हुए हैं यहाँ पे.
1: हाँ,
2: अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो
1: ऑब्वियसली. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं लाइक हिटमैन्स के, जो मोस्टली वो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं. वो आपसे बस पैसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, या फिर कुछ और, हम आपको अकाउंट्स बेचेंगे या कुछ आपको डेटा चाहिए.
2: हाँ.
1: तो आपसे वो डिटेल्स पहले ले लेंगे. हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएं किसी न किसी तरीके से, अगर आप प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं डार्क वेब को, टॉर को.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: आर प्योर शाही

0: answering. So we're trending right now just because we did ask. But look, the thing is, so you have these bunch of people who call each other names, and that's how it generally is in politics, and now it's become more about memes, and that will grow. And that's just the way politics is going to be. You also have people doing that in political sphere. The point that I have a problem with what the Prime Minister said is not that the Prime Minister said it, but he said it on Independence Day. And I don't think, personally, look, why do we mock Donald Trump? Because he says a lot of things that are not needed to be said. He gets down to that level. I'm saying it's you know, I mean, people doing memes, and that's how the politics is. But if the Prime Minister attacks people on Independence Day, I personally am a little traditional. I think that was not the occasion for it. I think the Prime Minister has a problem with people calling in names, which he can have. I think that's fine. He should attack them on other occasions. Independence Day is not a place to start calling people names. That's my personal thing about it. The second thing about it is it a one-sided thing? I agree with Harshvardhanji and Abhijit. No, it's a two-sided. I also, despite being an opposition supporter, I think the opposition sometimes, with lack of other things to do, will get more personal about people. And now that hit back has started coming back in, so it suddenly become a controversial thing. But I think there are certain offices that should be above it. Keep your dignity. There's no need to get down to calling people names. This branding of people, when it's done position and power, what happens with that is it becomes intimidating for those who are called. So I just think that shouldn't happen. See, they are kids. They're going to make memes, they're going to make fun, they're not going to be intimidated by the Prime Minister. So I think he should not get down to doing
1: it. Good evening, everyone. My name is Praful Tiwari. And first, let's begin with two facts. On 30th March 2026, our government declared that India has eradicated Naxalism. And the second fact is that today's India's most powerful fact is that we have the strongest youth in the entire world. So how are we going to prevent the youth whom we cannot provide the educational reforms, proper educations? There have been paper leaks. The entire nation has seen that. So how are we going to prevent that youth to convert into a Dimagi Naxals? Because bashing can go on. Absolutely. The leader of opposition can bash the Prime Minister. The Prime Minister can give any other remark over the opposition party. But what is the cure of this?
2: Very good question. Harshvardhan ji, kaise rokenge aap?
3: Nahi, mujhe lagta hai ye sabse jo is debate ka sabse important point hai, yahan aaye hum. Kya is desh mein kisi ko bhi chunav ladne se rok hai? छत्तीसगढ़ जो सबसे ज़्यादा माओविस्ट लेफ्टिस्ट टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जहाँ है, वहाँ आप सोचिए कि इन लोगों ने सड़कें उड़ा दी, इन लोगों ने बच्चों के स्कूल उड़ा दिए, इन लोगों ने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए. हम बात कर रहे हैं जहाँ स्कूल है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उनको तो स्कूल ही मिलना बंद हो गया, तो हमें क्या करना होगा?
1: द यूथ इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. अगर हम ही इलेक्शन में बैठ गए तो आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी फिर?
3: बिल्कुल यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए. कैसी बात कर रहे हैं?
2: मतलब आप वोट दे के
3: पार्टिसिपेट? आपको वोट दे के भी पार्टिसिपेट करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी आना. और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बंदूक की नली से क्रांति नहीं निकलेगी. जिसके दिमाग से बंदूक की नली से क्रांति निकल रही, वो दिमागी नक्सल है.
2: हर्षवर्धन जी, ये दिमागी नक्सल आप बंदूक की नली से नहीं बनते ना, आप अपने मोबाइल फोन से भी बन सकते हैं. और जितना ज्यादा उनका गुस्सा, द मोर डिसअपॉइंटमेंट, द मोर डिसअफेक्शन क्रीप्स इन, वोंट यू देन बी ब्रीडिंग दिमागी नक्सल्स और पीपल हु वुड देन क्वालिफाई?
3: हर डेकेड के बाद जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी उसको सोचना पड़ेगा कम्युनिकेशन का तरीका, इंप्लीमेंटेशन का तरीका, एग्जीक्यूशन का तरीका. इस सरकार के लिए भी हाई टाइम. इस सरकार के लिए
0: जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि स्कूल उड़ा दिए नक्सलों में, 90,000 स्कूल बंद हो गए सरकार के नीचे. 90,000 स्कूल, वो नक्सलवाद नहीं है. और जिस स्कूल में आप जाओगे, आई हैव अ 3.5-year-old son. At 3.5, he's learning AI. Abhijit and I spoke about this. At 3.5, गरीब का बच्चा नहीं सीख रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मेरा बच्चा इसलिए आगे जाएगा क्योंकि वो मेरा बच्चा है. ये अनफेयर है. हम इसलिए आज़ाद नहीं हुए. 15 अगस्त को हमें आज़ादी क्यों मिली? हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि कोई बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने. इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज ही बना रहे थे. हमें आज़ादी मिली कि हम सब इक्वल मुल्क के इक्वल हिस्सेदार बने. इस संविधान के पहले 4 शब्द हैं. पहले 4 शब्द नहीं है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का विपक्ष का नेता. हम भारत के लोग हैं. हम भारत के लोग सम्मानित होना चाहिए. किसी को कॉकरोच कह दो, किसी को नक्सली कह दो, प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कह दो. बंद करो ये सब छिछोरापना, बंद करो. हम सबको एक होना होगा और हमारी इज्जत ही सबसे जरूरी है. हम इज्जत के लिए.
3: तहसीन भाई बड़ी अच्छी बातें करते हैं. पर्सनल कमेंट

0: our country this year, March.
1: Correct. And until this year, now in August 2026, as of today, left-wing extremism is on the right, is on the rise in the Northeast, particularly in Manipur. That is not the point. I completely agree with you. That is an... Please, allow me to...
0: That is not left-wing, allow
1: me
0: but
1: to finish. Just allow me to finish. That is a failure of the government. The question is, when you brand your failure, their failure, to their aspirations, and then put motives on their aspirations, that because they're unhappy, you accept that they're unhappy, it's not an equal society, they will resort to violence. Why will they resort to violence?
0: Okay,
1: they will resort to system being changed.
0: Just a second. I want to take more questions. Ask your
1: that
0: question.
1: That I agree was a failure of the opposition. Just a second. That I agree with you.
0: Apna naam aur sawal.
2: Hello, sir. My name is Lakshay Baba and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कोई युवा कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो, तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है, बताइए।
3: नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है। आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद? एक लाइन में उन्होंने बोला हथियारी नक्सल समाप्त हो गए, दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत क्लैरिटी।
2: लेकिन अभी सर ने अभी बोला,
3: इसके बावजूद
2: सर ने अभी बोला कि,
3: और दूसरा
2: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने। तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।
1: वो अलग पहले देशद्रोही था, लेकिन छह महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे, सोनम वांछुक देशद्रोही, छह महीने पहले सोनम वांछुक सत्ते पर।
3: तहसीन की मुश्किल दूसरी है, आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए। ये एलीट लोग हैं, एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं। इन्होंने कहा एक मिनट तहसीन, इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं
2: सर? मैं
3: इसका मतलब ये हुआ,
2: मैं इस देश का यूथ
3: हूं, हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ हो गया। और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है, वो यही है,
2: यही तरीका कहते हैं। कोई हमारी बात नहीं,
4: 20 जुलाई को क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
4: There were violent riots.
2: अगर सर,
4: No. Answer the question. Were there violent riots on the 20th of July?
5: By the Delhi police.
2: That is not violent.
4: No, that is violent.
5: By the Delhi police.
4: There was a direct attack.
2: Violent, तो वो violent हो सकता है.
4: First of all, no, I'm sorry. You announced that you wanted to violate section 144. The whole reason section 144 was imposed, let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when parliament is in session because of the 2001 parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Naxal. Full stop.
2: Agar aap is desh ke yuvaon ki baat pehle hi maan lete to ye sab dekhne nahi padta.
4: I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
6: No.
4: No.
6: Never.
4: Then how are they?
5: Okay, I'd like to comment.
4: So पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना, आपके खुद के principles का
0: सवाल पूरा सरीवाला then this young man.
5: Okay, right to protest, right to dissent. The students were doing their protest constitutionally. कुछ नहीं हुआ था. It was all the violence by the Delhi police, sanctioned by Amit Shah, which is why the entire Delhi police. Allow me to speak. You know, I mean, we saw how those panned out. I mean, girls, women, उनके ऊपर you know, private parts में लाठियां चलाई गई है, किलो वाली लाठियां चलाई गई, what are we even talking about? That violence, I was there, I saw it happening right in front of me, tear gas, आंसू गैस के गोले and all of that, come on. I mean, no police, no government has the right to sanction all of that violence against the students. So now if you're going to talk about dimagi naksals, Prime Minister, ya to bata de ki wo kiski taraf mukhatib hai, kiski taraf wo dimagi naksal ka ishara kar rahe hain, ya phir hum apne aap ko dimagi naksal kahenge to aapko koi masle masail nahi hona chahiye.
0: Chaliye, bahut jaldi apna sawal puchiye.
7: Ma'am, aapko nahi lagta ki jaise aapne bataya ki wo Delhi police ne jo bhi violent
5: riot ki thi,
7: jo bhi kiya tha, agar aapko pata ho to CJP ka jo leader hai Abhijit Dibkei, usi ki एक लाइव वीडियो थी जिसमें वो दिखा रहा था कि जो प्रोटेस्ट थे असल में 8 से 10 बच्चे, वी डोंट नो वेदर दे वर स्टूडेंट्स और एंटी नेशनल, आई बिलीव कि वे एंटी नेशनल्स थे और एंटी नेशनल्स को मौका ही चाहिए होता है ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आने का। उन्होंने एक पुलिसमैन को पहले घेरा और उसके बाद वॉयलेशन हुए, और वैसे भी जो भी जंतर मंतर है उधर अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने तुम वहाँ करो, बट बट अगर जब वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएगा तो उसको हमें पहले से ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर नेपाल में
5: उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस को भेजी थी, सारी सिक्योरिटी निकाल दी गई थी और दिल्ली सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पे गुंडागर्दी हो रही
7: थी। लास्ट ईयर हम सबने देखा नेपाल में क्या हुआ, देयर वाज आल्सो जेंजी प्रोटेस्ट, बट अगर उसके वजह से नेपाल की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी, हमें भी पता है कि इंडिया जैसे एक इतने ज़्यादा डाइवर्स नेशन को हम इतनी इजीली अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। और जब गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह बना रखा है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, तो आप उसे क्यों पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हो?
0: तो जो लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन है। ओके, मोर पीपल
5: जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने मारा बच्चों को,
4: कोई बर्बरता नहीं था, इट वाज लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, नो बर्बरता, वेरी गुड।
5: नो दैट आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल, बट बांग्लादेश पुलिस को जब शेख हसीना ने कहा था स्टूडेंट्स पे लाठी मारे डंडा मारे, पुलिस बैक्ड आउट, आर्मी बैक्ड आउट, कि हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे। आई एम इन नो वे सपोर्टिंग बांग्लादेश,
0: नोबडी बैक्ड आउट, दे ओवरथ्रू द गवर्नमेंट,
5: अवर दिल्ली पुलिस, हमारी महान दिल्ली पुलिस बच्चों को मार रहे थे, लिटरली
4: दे वर वायलेंट क्रिमिनल्स, दे वर 3000 मर्डरर्स इन देयर, नॉट कॉपीट रेड,
0: जस्ट फॉर क्लैरिटी लेट मी रिमाइंड एवरीवन वाचिंग राइट नाउ, हुडा जी यू आर सेइंग दैट द वीडियोस ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सन बीइंग बीटन अप, In fact, the people police who may just fit the definition of Dimagi Naksal or Naksal marched into her house.
5: Just the police action, the comparison. Yeah, just the police.
0: They Delhi carried out the rampage. But anyway, there was
5: Bangladesh
0: no overthrow.
5: Police, उन्होंने बच्चों पे लाठियां नहीं मारी
0: थी. I think there's a student here who wants to speak. Yes.
5: And in no way I support Bangladesh whatsoever.
0: Okay,
5: for
0: go
5: the record.
0: On. Ask your question. क्या
6: Hello sir. Hello madam. मेरा नाम प्रदीप कुमार है, सेकेंड ईयर मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मेरा आपसे ये सवाल है कि उधर नक्सलवाद दिमागी नक्सली नहीं कहा गया था, कोचिंग माफियाज पे भी सवाल करा गया था, और वहाँ पे जो सुनने वाले थे वहाँ पे बस और लोग भी नहीं, स्टूडेंट एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट बैठी थी, उसमें से मैं भी एक था जो सुनने आया था कि मोदी जी एजुकेशन पे क्या कहेंगे, जो नीट पे ये बवाल हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सुनने आए थे, ना कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने आए थे। उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करने का कोई हक ही नहीं है, हक की बात नहीं है उन्हें,
0: तो अगर दिमागी नक्सल पॉलिटिकल एजेंडा है,
6: तो पॉलिटिकल एजेंडा है वो, उन्हें ये सब अगर टारगेट करना था तो पॉलिटिकल रैली में करते, ना कि लाल किला से, क्योंकि स्टूडेंट सुनने आए
0: अभिजीत आंसर दिस। This seems more like a political agenda, says this young man, than something that should have been said on Independence Day. That's what Tehsin also said.
8: Can you zoom in on this? This is political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She went on. This is during peak emergency.
0: No, but he saying ki aap political rally mein kahiye, red fort se mat kahiye. Independence Day ki speech mein mat kahiye.
4: Independence Day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
3: आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है, तो तब तो फिर रेड फोर्ट से पॉलिटिकल जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे? नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता
6: है? पहले आप सुनिए, पहले जो एनसीसी यूनिट एनएसएस यूनिट आए थे वो कॉलेज के थे, आप
3: वो भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं ना, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं। देश के 180 जिले पूरी तरह से माओइस्ट टेररिज्म से इफेक्टेड थे, और आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिकल इशू है? जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देता, जो अस्पताल नहीं जाने देता, जो आपको मोबाइल टावर नहीं लाने देना, जो आपको टीवी नहीं देखने देता, जो आपको सड़क नहीं लाने देता, वो आपको पॉलिटिकल लग रहा है? और अगर ये पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिक्स हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, हर प्राइम मिनिस्टर,
0: यू नो। एंड आई आल्सो, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वांट टू गिव इट सम कॉन्टेक्स्ट। वन लेडी फ्रॉम कांकेर एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस एंटायर डिबेट रेजिंग अराउंड दिमागी नक्सल, एंड शी इज समबडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय माओइस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक ऑफन अबाउट। दीज आर पीपल हु ब्लू अप रोड्स, in Chhattisgarh, in Jharkhand, what used to be known as the Red Corridor. They used to pick up men, brand them informers, and slaughter them. After a so-called Jan Adalat, they used to pick up little girls and sexually exploit them, massacre them, leave them pregnant many, very often. Let's listen to this lady from Kanker about what this
9: she has. दिमागी में समर्थन दे रहे हैं इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग अपने पति को हैं बस्तर में तो ऐसे कई बहनें हैं जो अपने पति को हैं.
0: So there are women there who have lost their husbands in Bastar, in Kanker.
1: Nobody from here. I'm taking the liberty to speak for them. Wants violence or wants people to be killed. What are they asking for? Let's be clear and let's not mix up the two issues. What happened with this woman is terrible. Nexalism, violence is bad. At this moment, left-wing extremism, which is Nexalism, is happening in Manipur where there are Jan Adalats, where people are being killed. At this moment, right now, between two communities, and that situation is quite messed up. And right now, Padmaja, you had interviewed, you've still not got the Nagaland Accord, which by the way, is also left-wing extremism. Let's come to what they are asking for. What these people are asking for, what he went in hope for, was that the Honorable Prime Minister, after Dharmendra Pradhan went, said that there will be certain amount of solutions that will be given. None of those solutions are specific and they are left wanting for more. For example, I'll be very brief. This idea that if there's a paper leak, you'll suddenly have special courts and in 3 months, people will be sentenced. Now, all of you all must ask, and I send this to all the opposition people, the opposition also in our country is so dumb that they didn't ask this question in Parliament, they didn't allow Parliament to function. You know, in special courts, there are 3 lakh cases pending. Ask the government, where are you getting the judges from? Where are you getting the judges? Are they special judges? Or the judges who rape ka case dekh rahe hain, unko wahan bithaoge? So both are fooling you, the government and the opposition. And that's where these people are left wanting. Now, when they're left wanting and they're asking for their rights, one calls them Gen Z, aap aage lado. Dusra kehta hai, aap dimagi naksal ho. Bhai, inko unka haq chahiye. Aur kuch nahi chahiye. Stop calling them names. Just give them what is right to them, their dignity.
0: Counter to that, Tehseen, you are right in saying that people went there looking for solutions. But aapko yaad hoga ki wahan par Pradhan Mantri ne 1 crore logo ko AI skilling ki bhi baat ki thi. He also said that we are going to provide free of cost coaching. And that is where you were looking for those solutions, right? Sabse bada aapka problem kya hai? That not everyone can afford coaching. But solutions were also spoken of. You are saying that he should speak only of solutions, should not bring in the politics. Very quickly, I think this gentleman here has a question.
10: Sir, I believe the government shouldn't criminalize dissent. And the opposition shouldn't romanticize extremism. All are abided by the constitution.
1: That's right. Brilliant.
10: And ma'am, Jharkhand mein bhi protest hua.
11: Bilkul.
10: There was no stone pelting. There was no, the police was not harmed. Wahan bhi sab students ko lathi padi. Delhi mein bhi lathiyan padi. And I second to that whatever you have said.
4: Punjab, their government, bahut lathiyan padi.
0: But Kerala mein water cannon padi. Kerala mein bhi water cannon padi.
11: Yes, yeah, a journalist. Yeah.
0: Kerala mein SFI ko lathi padi.
10: But ma'am, either the opposition or the central government, we all are abided by the constitution. झारखंड के बच्चों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि पुलिस को मारा ऐसा कोई रास्ता लिया जैसे दिल्ली में हुआ था.
0: व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? सेम कैटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिए आपका सवाल.
3: मैं भी कह रहा हूं लास्ट डिबेट में भी मैंने यही कहा था.
0: आपका सवाल.
12: गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज समर गेलॉर्ड. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. माय क्वेश्चन इज सिंपल कि अगर प्रोटेस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट एंड दे आर पीसफुल, तो व्हाट शुड बी द मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू स्टॉप देम? आई डोंट थिंक दे शुड बी लेट देम मार्च इनटू द इनसाइड द पार्लियामेंट.
11: अग्री.
12: So if there are
11: two things. पहली बात तो ये कि इट शुडंट रीच टू अ पॉइंट कि स्टूडेंट्स हैव टू एक्चुअली फॉर्म अ पार्लियामेंट मार्च. नाउ दैट इट हैज, द गवर्नमेंट शुड पीसफुली एड्रेस द स्टूडेंट्स. आपके मुल्क के बच्चे हैं ये, उनको पानी के बौछार से, किलो वाली डंडों से. डू नॉट क्रिएट दैट वायलेंस अगेंस्ट देम. एंड जहां तक झारखंड का सवाल है, एज फार एज झारखंड इज कंसर्न, द फैक्ट दैट राहुल गांधी जी एक्चुअली स्पोक अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द पुलिस इन झारखंड डिड, द फैक्ट दैट एवरी ऑपोजिशन वॉज इन फेवर ऑफ द झारखंड प्रोटेस्ट, द फैक्ट दैट इट
0: डिड नॉट
4: रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट मी राइट अप टू हियर. व्हेन आई एम वॉकिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर आई एम बीइंग टोटली पीसफुल. ओके, इज दिस इलीगल? यस, बिकॉज आई एम वायलेटिंग द लॉ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर नोबडी नोज. Should the police come and stop me? Yes. Will they use violence? Yes. is it justified when you're already illegally entering? Section 144 is what? It's a general restraining
11: order.
4: You have violated the law. Does it justify police violence? Absolutely.
0: And thanks to your example, Pradhan Mantri officially called you a Naxal.
4: It's called law and order.
0: But when we're talking about politics,
11: he literally ran away.
0: You know, when we're talking about politics, all of this while, we said that this was more about ideologically putting a label on somebody, just like, you know, people have been called Andhbhakt, etc. But here is where the politics comes in. I want to show you all a video that has been put out by the BJP. Now, how do you justify this? Let's first listen to what is this Dimagi Naxal video that now the BJP has put out.
13: Who is a Dimagi Naxal?

0: इज अ दिमागी नक्सल. अभी तक तो हम कह रहे थे टिल नाउ वी वर सेइंग दैट दिस इज एनीवन हु आस्क्स फॉर एन आर्म्ड.
1: यू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द राइट विंग. दे डोंट रीड इनफ. व्हेन दे रीड ऑल द रॉन्ग बुक्स. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कंफ्यूजन, सिवियर आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन. दिस इज अ स्टूपिड वीडियो. इट्स अ कैची वीडियो बट इट्स अ स्टूपिड ब्रेन डेड वीडियो.
2: फॉर वंस आई एग्री विद यू.
0: ये तो आपने पॉलिटिकल कर दिया ना इसको. अभी तक आप कह रहे थे दैट वी आर अगेंस्ट दोज हु आर अगेंस्ट द कंट्री. नाउ यू पुट ऑल ऑफ देयर पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन दिस वीडियो एंड सेड अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एंड अभिजीत दिपके. ऑल दिस व्हाइल यू सेड वी डोंट केयर फॉर अभिजीत दिपके. नाउ व्हाई हैव यू पुट हिम ओवर देयर?
3: पद्मजा, इसमें चिदंबरम का डालना चाहिए था, जरीवाला जी का डालना चाहिए था, केजरीवाल का डालना चाहिए. जिसने खुद कहा कि आया मैं दिमागी नक्सल, जिसने नहीं कहा मैं दिमागी नक्सल हूं, उसका वीडियो नहीं डालना चाहिए. दूसरा, एक बहुत शानदार रैप सॉन्ग दिमागी नक्सल पर ही है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, जो नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो इस देश में हर चीज में जाति धर्म की अराजकता कराते हैं. आपको कोई तरीका क्रिएटिव खोजना चाहिए. लेकिन मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप सीधे सीधे देश के विपक्षी नेताओं को कहें कि दिमागी.
2: एक लाइन,
0: एक लाइन,
2: बस एक लाइन क्विकली. मेरा सवाल इज विद द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई वुड ही ब्रांड एनीबॉडी as a नक्सल to begin with, number one. Number two, फिर वो नक्सल कह किसको रहे, प्लीज इसको भी स्पष्ट कर दें, बता दें कि
0: तो किसकी तरफ मुखातिब
3: खुद बता रहे
0: हैं.
2: और तीसरी बात, अगर आप सारे नेताओं को, तमाम ऑपोजिशन को अगर आप एक ही वीडियो में डाल के सारे लोगों को एक ही लाठी से आप हकाल रहे हैं, तो दैट क्लियरली शोज विच प्रूव्स माय पॉइंट इन द बिगनिंग, जो मैं कह रही थी कि आई एम अ प्राउड दिमागी नक्सल बिकॉज आई रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन विच एवर पार्ट दैट मे बी. अ प्राउड ऑपोजिशन, अ प्राउड दिमागी नक्सल एंड अ प्राउड Muslim who says that I'm a dimagi nakhsa.
1: Because,
0: okay, देखिए ये वीडियो आते कैसे नई ऊर्जा आ गई हुड़ा जरी वाला.
1: Because Huda here has said that she's a dimagi naxal. Can I just run a quick defense of P. Chidambaram? See, even within dimagi naxals, there is two strains. Huda who believes she's a dimagi naxal, and Chidambaram. One second, let me finish. Chidambaram, who is nowhere near a naxal, if you know him in private, he's an arch capitalist. He will say he's a naxal. Do you know why? Because in order to backstab somebody, you first need to get behind them. So he will claim he's a naxal, and then he will do what? He will destroy them from within.
0: And you said that you are going to vote him for prime minister.
1: I will totally vote. I am boss. I am team Chidambaram. He is not a naxal. He is the biggest hawk on nuclear bombs. He says the exact opposite so that people believe he's a peacenik. So when he does it, it's no, nobody can question it.
0: Hamza Chidambaram. Yes, go on. Very quickly, 30 seconds. You have time for a question. 30 seconds. 30 seconds.
4: Panelists, my name is Ashwin Krishna. I am 5th year law student. So my question is pertains to generally all the panelists. So don't you think it's high time that we start respecting the youth of our country?
2: Thank you.
4: The CJI comes and says these are the cockroaches of the country. No. Prime Minister sometimes says, referring to uncleared version of Dimagi Naxals, and they haven't done much for the educations. Yesterday I was reading a parliamentary panel's report. It said that 73% of the students appearing after the primary education, they drop out of the secondary education. And these shows that they don't respect our youth, they don't do anything for the education, and clearly they don't brilliant. Justify what Dimagi Naxal about it.
2: Thank you.
0: Aapne to itna gehra sawal pooch liya hai na.
2: Bilkul.
1: There's a very specific answer to that. You see, first of all, this the very first point you raised, which was why don't we respect the youth? You do respect the youth. The problem is there is complete rot in your education system. Like he said, both the opposition and the government are making fools of you because nobody is actually talking about the real problem. Okay, this is number one. Number two, understand, with youth, they will always see everything as an insult. I remember when my mom used to tell me certain things, I'm like, "Arey yaar, ye fuddy duddy uncle, auntie, mummy, papa, log, they don't this thing. This is natural." This now, who is the one, according to you, who's specifically insulting the youth? Because see, I don't think anybody takes the youth lightly at all, ever. Especially not in India, where they're a huge voting demographic. So nobody has ever taken

0: them for a ride. But I think it is also very important to understand that you have to work within the ambit of the law.
1: I think so.
2: I'll tell you why the youth feel that they're being taken for granted. Like I said earlier, the opportunities that you have in privilege, and it's both in government and opposition, you guys don't have. For example, let's look at NEET, okay? And I'm going to be very personal. I hope this is not edited. Aap kitni bhi mehnat karte, aap doctor ban jao. Sara paper leak ho gaya, you get all that. Chances agar aap Bihar se ho, Nitish Kumar ka beta aapka shiksha, aapka swasth mantri hoga. And he's there because he's Nitish Kumar's beta. So I'll tell you, the problem is, और आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन, आप किसी भी 10 सेकंड दीजिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में, एक स्पोर्ट्स बॉडी को मत, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर सारे नेता उनके बच्चे बैठे हुए, उनको मैं बीजेपी को अटैक कर रहा हूं, मैं बीजेपी, जस्ट गिव 10 सेकंड, आई गिव 10 सेकंड. वो महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में रोहित पवार क्यों एक क्रिकेट बोर्ड में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा क्यों एक क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या. एंड सो यू सी व्हेन यू गाइस टुडे आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग एंड टचिंग देयर फीट, अरे दादा, अरे साहब, आप बन गए, एंड यू गाइस डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इट इज ब्रीडिंग अ डिवाइड व्हिच इज ग्रोन मच मोर. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी दैट द ज्योतिरादित्य सिंधिया.
3: कोई कुछ भी कर ले, राहुल गांधी के सामने सब कुछ झुकना पड़ेगा ना.
2: मैं कह रहा हूं,
3: राहुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. राहुल गांधी के सामने कोई कांग्रेसी कितनी भी मेहनत करे कुछ नहीं कर पाएगा. ये मुश्किल है ना, यही सोच जा
1: रहा है. तो जवानी जिस ओर चलेगी, जमाना उसी ओर चलेगा. आई थिंक दिस वेरी पैथेटिक वीडियो वाज,
3: चलेगा नहीं, चल रहा है, चल रहा है.
1: गवर्नमेंट गवर्नमेंट का
3: तरीका
1: जेन अल्फा, क्लियरली दे आर फेलिंग massively at it, monumental failure ye dikha raha hai, unka darsha raha hai.
4: You know, at the end of the day,
1: the opposition is with the janta,
4: not just the youth, every single citizen, the people of India should demand respect, should demand what the government owes them, but also be mindful that in the course of doing that, are you being in any way being influenced or brainwashed, and is there an attempt to try and create Dimagi Naxals? You've heard enough from here, but thank you very much as always to this lovely, lovely group of young people here, and as always to our panelists. And thanks very much for joining us here, because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching. Thank you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite. Across the country.
11: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
11: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, 4 लोगों के पास है ये।
15: कुछ इससे भी अनोखा
14: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
16: वी आर टर्निंग अ पेज इन नेपाल्स पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन द बेडरॉक ऑफ गुड गवर्नेंस एंड
17: एनडीटीवी वर्ल्ड। Another special report, China has hosted the second edition of the World Humanoid Robot Games, showcasing more than 2,000 robots competing across dozens of events. And it proves that the future of robotics can be as unpredictable as it is equally impressive. Take a look at the special report.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
1: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
2: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
3: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
4: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
5: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
6: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
7: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pavan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
3: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
7: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
2: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
8: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
9: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
10: நான் புரட்சி தலைவரோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
11: இன்றைய சீரம் வருங்கால பீரம் நம்முடைய மாண்பு
12: அதுதான். நம்ம தளபதி எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
2: The Marathi language row has triggered a political reaction, with Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav hitting out at the Maharashtra government. Yadav said that the state's mother tongue must be respected, but alleged that no language should be politicized and imposed. He claimed that such politics creates distance, discord, and questioned whether people's right to freedom was being violated. Yadav also accused the BJP of putting pressure mainly on the poor, saying not everyone has the ability to learn another language. He urged the government to keep both its heart and mind open on the issue.
13: अरे क्या बताऊं यार, मुझे मराठी नहीं आता.
14: अच्छा,
13: अभी मुंबई में हो गया, बोलते हैं कि जो मराठी बोलेगा वही गाड़ी चलाएगा, कहीं तो लाइसेंस जमा कर लेंगे, 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर देंगे और 10-15,000 रुपए की फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या बताओ, हम लोग इतना थोड़ी कमाते हैं कि 10-15,000 रुपए की फाइन और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए कैंसिल करेंगे।
3: अच्छा,
13: किस वजह से चलाए बताओ,
3: तो
13: आपका मन ही नहीं करता यार।
3: तो आप ऐसे बैठे रहोगे क्या?
13: आप क्या कर सकते हैं आप बताइए, अगर मैं चलाने जाऊंगा कहीं
3: तो आपकी क्या राय है उधर, क्या राय है सरकार से?
13: मैं चाहता हूँ कि यार अभी हम लोग गाँव के लोग हैं।
3: अच्छा,
2: and a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
14: ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
15: ਕਾਰਵਾਈ
14: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
16: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
17: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.

0: of seats. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी.
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पर आए। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
0: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
7: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
8: Chini ke badhe hue daam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
9: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
10: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंग्स द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस, बट ऑल्सो पोलिटिकली। सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
6: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security.

0: बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
1: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: वेल, लॉट्स मोर लाइंड अप ऑन दिस एडिशन ऑन द अदर साइड ऑफ अ वेरी क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
5: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
6: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership. Our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
7: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
8: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
9: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal tie.
10: Join me at NDTV World a week share, ideas across border, in Kathmandu on August 27th. As we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
3: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The Grand Old Party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते. मैं ऐसा मानता हूं खाने के दांत अलग है,

0: 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
1: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
4: We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms. We want to accelerate the pace of economic catch-up.
5: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
6: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
7: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
8: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
9: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal tie.
10: Join me at NDTP World Anviksha, Ideas Across Border, in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
3: A second changes everything. A minute moves a nation.

0: Tare and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organizational experience and state level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है. जिसको राहुल

0: राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
1: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
2: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
3: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
1: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
4: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
5: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फ़ायदा हो रहा है।
6: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
2: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange, because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
6: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
1: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
7: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
8: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியாக உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல் அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
9: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
10: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
11: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
12: ਕਾਰਵਾਈ
11: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
13: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
12: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के DG अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि CMR को और CM रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
1: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
14: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
15: We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms. We want to accelerate the pace of economic catch-up.
16: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
17: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
18: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
19: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
20: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal tie.
21: Join me at NDTP World Anviksha, Ideas Across Border, in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
14: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour.
1: Welcome back. A special report. The Trump administration's battle with US media is taking a new turn. The Pentagon has fired the editor-in-chief and a senior reporter of Stars and Stripes after they publicly opposed any interference in the paper's editorial independence. The move is now raising fresh questions over the press freedom inside U.S. military. Here's a report.
22: The Pentagon fires the top editor of Stars and Stripes. Editor-in-chief Eric Slavin and a senior reporter were dismissed for insubordination. Slavin says he was fired for opposing censorship at the military newspaper. The paper is partly Pentagon-funded, but has long maintained editorial independence. The firings came days after Stars and Stripes reported on grim conditions aboard the USS Abraham Lincoln, The carrier has been deployed in the West Asia since February. The report also drew

0: Vinod Tare and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organizational experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, चीज को

0: इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया, इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities.

0: he had the conviction, he had the resilience, he had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape, he needs a white t-shirt.
1: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as bat, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
3: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
4: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी. और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है.
5: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस बट ऑल्सो पोलिटिकली. सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pavan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
0: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
5: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
2: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
6: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில், நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்கள்.
7: அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும், இந்தியாவுடைய

0: சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
1: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
2: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
3: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
4: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
5: ਕਾਰਵਾਈ
4: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
6: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
7: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।

0: भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पुरजोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी.
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते. मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है.
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
7: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
4: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not right, driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
8: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेंपरेरी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
9: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
10: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the.
6: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
10: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
4: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
11: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
12: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல் அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
13: நான் புரட்சித் தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சித் தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
14: இன்றைய சீரம் வருங்கால பீரம் நம்முடைய மாண்பு
15: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
4: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwant Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
16: Dekho, mainu lagda hai ki ilzam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhone bebuniyad ilzam laaye ne unhade dat ke samna karan layi puri taiyar ha. Main na pehla ghabrai si na main ajj ghabrauni ha. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
17: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
18: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन।

0: party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
1: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
2: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
3: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी. और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है.
4: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस बट ऑल्सो पोलिटिकली. सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pavan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the
5: argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
4: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
1: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
6: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
7: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மவுண்டு மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியாக உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்ல இருக்க நாங்க. அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
8: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
9: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
10: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
11: ਕਾਰਵਾਈ
10: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
12: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
9: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
1: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
13: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground.

0: प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
1: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है। जैन जी रूठे हुए हैं।
2: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
3: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The Grand Old Party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
0: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
4: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
3: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
5: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction, he had the resilience, he had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
6: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
3: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
7: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
8: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
9: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस बट ऑल्सो पोलिटिकली। सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pavan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
5: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
9: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
3: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
10: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
11: அதனால நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முலா, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.

0: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
1: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
2: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
3: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
4: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
5: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण ज़रूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.

0: गांधी जी।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has.

0: பயன்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
1: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
2: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
3: A political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
4: Dekho, mainu lagda hai ki ilzaam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhone bebuniyad ilzaam laaye ne unna de dat ke samna karan layi puri taiyar ha. Main na pehla ghabrai si, na main ajj ghabrauni ha. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
5: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
6: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
3: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.

0: मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
1: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
2: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
3: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
0: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
4: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है,
3: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
5: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
6: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
3: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
7: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
8: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
9: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
5: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange, because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
9: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
3: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
10: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
11: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிவிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியாக உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள், அவர்களுடைய மோடு வேற எங்களுடைய மோடு வேற.
12: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
13: அதுதான் நம்ம தளபதி, எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
3: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
14: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
15: ਕਾਰਵਾਈ
14: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
16: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
17: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
3: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.